आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दोषी रे तेरी हर चाकू से जलते हैं ख्यालों में चराग, तेरी हर चाप से यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पर्दा हिल गया है, आठ आठ को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया, वो चराग

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

जो है वो लिबास भी नहीं पहन सकते जो किसी दूसरे मजहब वालों का कोई शियार हो, ये भी नहीं कर सकते हो। तो औरतों को भी ये कहा कि औरतें लिबास वो नहीं पहन सकती है जो मर्दों का लिबास है, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। और जो बड़ी खास तंबीह आई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की मशाबत अख्तियार करते हैं, और लानत है उन औरतों पर भी जो जो वो मर्द जो है उन मर्दों पर जो औरतों की और औरतें जो मर्दों की मशाबत अख्तियार करते। तो लिबास में हमने इसका भी खास ख्याल रखना है। ये बाज लोग का जो है देखा जाता है, खास करके इंडिया में देखा जाता है, बाज दफा जो है वो लोग आजकल चूंकि हज करने उमरा करने के लिए जाते हैं तो वहां लोग अजीब किस्म के लिबास पहनते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये लिबास जो जैसे खालिस सुर्ख और ये कहा, हमारा मेरे पीर की पसंद है। और हालांकि वही लिबास वहां के गैर मुसलमान पहनते हैं, उनके शियार है देखा मेरे पीर की। आप वो आदमी जो कहते हैं मेरे पीर की पसंद है, तो वो खुद अपने ईमान का हिसाब कर ले, मैं नबी की पसंद करनी है या पीर की पसंद करनी है। तो ये जो आज इन दूसरों की जो है पीर की और अपने जो शेख की और ये पसंद करके उस तरह से कर लेते हैं, और फिर ऐसे काम जिसे नबी ने मना फरमाया हो, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सफेद लिबास पहना करो और मुर्दों को भी सफेद लिबास में करो, तो आदमी कोशिश करे या चलो लेकिन एक मखसूस पहन के मेरे पीर की पसंद, और वो भी जो गैर मुसलमान से मुशाबहत है, तो ये गोया के आदमी को जो है एक गैर शौरी तौर से ऐसा काम कर रहा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतन पसंद नहीं है। तो बहरहाल मुसलमानों आज की जो आपके सामने इसी मुनासिबत से हदीस में आप पढ़ता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो है जन्नत में जाने के लिए कितना आसान रास्ता है, क्योंकि असल इस्लामी आदाब अखलाक नबी की तबाह करने का असल मकसद क्या है कि आदमी जन्नत में जाने वाला बन जाए और जन्नत में जाने के लिए उसका रास्ता आसान हो जाए। तो जन्नत में जाने का रास्ता बहुत आसान है। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उबाद बिन सामित की हदीस है ये, और ये तर्मिजी में भी आई है। तो आपने सल्लल्लाहु फरमाया कि इदमनु ली सित्ता मिन अनफुसिकुम अदमनु लकुम जन्ना, आपने फरमाया लोगों तुम अपने से जो है छह चीजों की मुझे जमानत दे दो, तुम्हारी जो जान में जो है तुम्हारे नफ्स में छह चीजें हैं, इस छह चीजों को मुझे गारंटी दे दो कि ये छह चीजें ऐसे इस्तेमाल करोगे जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जैसे ऐसे इस्तेमाल करोगे तो फरमाया मैं इसके मुकाबले में तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो गोया किसी आदमी को अगर जन्नत की गारंटी चाहिए, जन्नत का टिकट चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल पर अमल कर दे। ये भी याद रखे, दुनिया का कोई आदमी बड़े से बड़ा बुजुर्ग कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। किसी आदमी कोई को अपने लिए भी नहीं कह सकता है कि मुझे जन्नत में जाए, बड़ा से बड़ा पीर हो, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग हो, उस्ताद हो, आलिम हो, वो भी नहीं कह सकते। हाँ ये है कि आप किसी को अच्छा देते हो, आप उसके लिए हुस्न नजर रख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो जो है अपने जिनके लिए हमारा पहले ईमान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो जन्नत उन्हीं के लिए बनी है और जन्नत उन्हीं के लिए है और वो जन्नत के लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा किया, और ये नबी जिसकी गारंटी दे कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं, तो उसमें कोई शक और शुबा नहीं हो सकता। एवं फरमाया कि उस दुखो इज हदस, तो फरमाया कि उस दुखो इज हदस। एक बात यह है कि मुसलमान ईमान वालों के जब तुम बात करो सच्ची बात कहा करो, सच्ची बात, तो गोया कि आप सच्चाई को अपने पर लाजम कर लो, आपके कौल और फेल सच्चाई हमेशा हो। एक होता है कि जो है 100 बातों में 10 सच्ची बोल ली बाकी झूठ भी शामिल हो जाता है, तो फरमाया ये नहीं, क्या तुम जो है ये सच्ची बात सच अपना लोगे तो ये एक पहली जो है अलामत है जन्नती होने की। तो आप सच्ची बात जो है आप मामलात में लोगों से बात करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, तो सच्चाई को अपनाओ, उस दुख को इजा हदस तुम। और आगे फरमाया वह औफो इजा वाद तुम, इसलिए फरमाया कि जब वादा करो तो उसको वादा को पूरा करो।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 12:10 ہوا چاہتے ہیں, باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ہوا بھی چل رہی ہے, درختوں کے پتے سارے سبز ہیں, سیاست جو ہے وہ بالکل خاموش ہے, گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, چھٹیوں پہ گئی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو پھر اخبارات میں, ٹی وی پر بیانات, فیس بک پر, سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے پھر میں وہاں ہر طرح کی شروع ہو جائے گی, بہت ساری باتیں ہوں گی. تو سمعین, ہم نے صبح انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے, روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے. پہلے آپ کو پتہ ہے, آپ کے ہمارے سب کے تھنک ٹینک آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, موسم کے لحاظ سے, قانون قاعدے کے لحاظ سے, بیماریوں کے لحاظ سے, سیاسی بیماریوں کے لحاظ سے, غیبیت کے لحاظ سے, بہت ساری چیزیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ٹیکسی کے قانون, نئے جو کاروبار آتے ہیں کوپن ہیگن میں یا پورے ڈنمارک میں, تو یہ باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اس وقت تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے جتنے ناظرین اور لسنر ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. موسم کا حال 28 سے 30 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ جو سمندر کے نزدیک ہیں وہاں پہ 27-28, کیونکہ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ سمندر کی لہروں سے تھوڑا سا سرد ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ شہر میں آتے ہیں, گنجان آبادی میں آتے ہیں, تو پھر ٹیمپریچر جو ہے وہ اپنی پیک پہ, ہائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے 28 سے 30 تک موکری جگہ پہ ہے, لیکن فیل جو ہے وہ 32-33 تک ہے, یعنی کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہے, آپ پانی ضرور پئیں, اور کوشش یہ کریں کہ جتنا آپ نمکین پانی, یعنی کہ سٹروس فین جو ہے, سٹرون والا, نیمبو والا پانی, وہ آپ آج ضرور پئیں, کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر سے جو یہ ایسڈ نکل رہا ہے جس کو ہم پسینہ کہتے ہیں, یہ اس کی جگہ لینے کے لیے جسم میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور پانی اسی وقت جب وہ نمکین ہو تو چلتا ہے. ایک نمک ہے جو سمندری نمک ہوتا ہے, جو ہم عام حالت میں گھروں میں کھاتے ہیں. ایک نمک وہ ہے جو پاکستان کی, جس کو ہمالین نمک کہا جاتا ہے, جو کھیوڑا کا اصل نمک ہے, جس کو پنک سالٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ یہ جو ایسڈ سے بنتا ہے, جو سمندری ہوتا ہے, یہ اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب ڈاکٹرز یہ کہنا شروع کر دیے ہیں, اور اب جو مثلا بہت ماہر لوگ ہیں, جو اب کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کا ریڈیو پہ آ جانا, ٹی وی پہ آ جانا, سارا سوشل میڈیا پہ آ گیا, تو اس سے جو ہے اویئرنیس بہت زیادہ جو ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو اب یہ جو کیمیکلز کی چیزیں ہیں, خاص کر ان گرمیوں کے اندر, اس طرح کی گرمی کے اندر آپ پیزا نہ کھائیں, برگر نہ کھائیں, اس طرح کی, حالانکہ جو بنا رہے ہیں وہ بےچارے میری اس بات سے غصے میں ہوں گے, لیکن یہ کیونکہ اس کے پینے سے آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑے گی, اور آپ جو کیمیکلز ہیں اس کے اوپر, جو کیچپ وغیرہ یا دوسری چیزیں لگائی ہوتی ہیں, وہ کیمیکلز ہوتی ہیں. تو یہ 40 سے لے کے جو اوپر والی ایج والے لوگ ہیں, ان کو پورچسٹر کا جو ہوتا ہے بیماری جو ہے, پیشاب کی تکلیفیں جو ہیں اس سے شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں, اور نمبر دو, سب سے بڑا جو آرٹیفیشل فوڈس کا ہے وہ آپ کو کینسر کی طرف لے کے جا رہا ہے, یعنی کہ آپ سوڈا وین پیتے ہیں, کوکو کولا شوق سے پیتے ہیں, دوسری چیزیں, تو میں بھی پیتا ہوں, یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں پیتا, میں بھی جب دوست یاروں میں بیٹھا ہوں تو چسکی لگانے سے ہم باز نہیں آتے, ایک آدھا پیپسی یا کوئی چیز کولا سامنے پڑا ہو تو آدمی پی لیتے ہیں, لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں. لہٰذا جتنے بڑے بڑے فوسکا ہیں, یعنی کہ جو ریسرچر ہیں بڑے بڑے دنیا کے, وہ اس چیز سے منع کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں, خصوصی طور پہ جب گرمی ہوتی ہیں اور گرم ہوا ہے اور آپ کو پسینے آ رہے ہیں, تو ان چیزوں سے آپ بچیں. تو راجہ صاحب, ये तो है मौसम का और बीमारी का। और दूसरा जो लावा जो है, जिसको हम अपनी पंजाबी जबान में पंबू कुत्ता कहते हैं, ये पंबू कुत्ता होता है एक तितली बनने से पहले, ये इसके बड़ी बड़ी क्या नाम है इसके अंदर वो जो है आप ये कह सकते हैं कि एक शाखे किस्म की इसके बाल निकल आते हैं। वो बाल इतने खतरनाक हैं कि अगर वो आपके जिस्म को टच कर जाते हैं तो वहां पे इतनी खारिश और जलन आपको होनी शुरू हो जाती है, वो जगह बिल्कुल एक किस्म की जल जाती है, जैसे कि ये इंतहा से ज्यादा खतरनाक है वो। और दूसरी चीज है कि ये कहते हैं कि अगर इसके वो जो बाल हैं अगर वो टूट कर हवा के साथ आपके गले में सांस के जरिए अंदर चले जाते हैं तो वो इंतहाई खतरनाक हो जाते हैं। लिहाजा आप दरख्तों के नीचे जब जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि बच्चों को ऐसी जगह से दूर रखें, और अगर बच्चे जो हैं वो इन गोलों के पीछे भागते हों, नजर आपको आ जाए, तो आप फौरन से पहले जो है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें। अगर आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो आप जो है 115 पे कॉल करके उनको भी बता सकते हैं, या दूसरे अदारों को, पुलिस को बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये खतरनाक लावे देखे हैं, तो वो उसका सदबाद करने आ जाएंगे। ये हर इंसान के लिए लाजमन है। और कोपेनहेगन में आपको पता है कि आमा में पाए गए हैं, फ्यून में बहुत ज्यादा जगह पे पाए गए हैं, और इस तरीके से अब तो उर्दू में भी नशर हो गई हैं ये सारी चीजें, और इस रेडियो से भी हम आप लोगों को, तो आप ये एहतियात करें, क्योंकि ये जो बाहर की चीजें हैं, जब बाहर से जो यहाँ के रिसर्चर है वो ये बता रहे हैं कि जो बाहर से खाना सब्जियां फ्रूट वगैरह दूसरी चीजें मंगवाई जाती हैं, इवन ऑरेंजेस मैंगोज, इनके साथ भी इनके जो हैं वो अपना मुंह किस्म के बैक्टीरियाज और चीजें जो है वो इस मुल्क के अंदर इम्पोर्ट हो रही हैं, आ रही हैं इस मुल्क के अंदर आ रही हैं। लिहाजा अब ये सख्ती कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की कोई चीजें जो पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में फिर ये पे गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो कोई इस तरीके से चीजें कोई भी ऐसे किस्म के अपना फलदार चीज या अपना कोई घर से ले आता है कि मैं ये दरख्त लगाऊंगा या कोई ऐसा पौधा ले आता है, तो उसके उसके साथ इनको 10,000 रुपयों का जमा, क्योंकि उसके लाने के लिए आपको पहले जो है वो स्पेशल जो महकमा है, जैसे कि हम जानवरों को लेके जाते हैं, कुत्ते या बिल्ली को लेके जाते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और वो फूड मिनिस्ट्री जो है वो इशू करती है, और उसके ऊपर वो काफी डॉक्टर्स से पहले जो हैवानों का डॉक्टर है, जिसको हम डंगर डॉक्टर भी कहते हैं, हम उनके पास से जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और जब तक वो नहीं होगा आप तो दूसरे मुल्क में अपने जानवरों को लेकर नहीं जा सकते। इसी तरीके से अब इन्होंने ये कानून बना दिया है, और ये कानून नाफाद हो चुका है, इसका जो है उर्दू में भी आपको मिल जाएगा रिटर्न जो है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा। अगर आप डैनिश में कहीं पढ़ते हैं तो आप उसको देखना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट पे आप उसको दबाएंगे और आप उसको उर्दू पे ले जा सकते हैं, पंजाबी पे ले जा सकते हैं, जो भी आपकी जुबान है, अरबी, तुर्की, जो भी, उसके ऊपर जब दबाएंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा और आप अपनी जबान में सारे की कदावाल आप जान लेंगे, आपको पता हो जाएगा कि ये क्या है। तो लिहाजा राजा साहब, ये तो थी मौसम के बारे में और यहाँ के जो तकलीफात है और जो गर्मी का मौसम है, और आज शाम को तो वो कह रहे हैं कि आज बहुत ही ज्यादा तूफानी बारिश होने के इम्कान हैं, और ये है कि जिसको यहाँ पे कहते हैं स्काइब, जैसे कि हम कहते हैं कि बाल्टी के साथ कोई पानी डाल रहा है, तो ये छप्पड़ फाड़ बारिश जो है ये आज इसके आने के शाम को बहुत ज्यादा इम्कान है। जी राजा साहब,
0: जी शाह साहब, आपका शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से सारी चीज़ों को लिया। तो शाह साहब, ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं, बीमारियां, एहतियात, खुराक, लेकिन उसके बाद चूंकि अब सियासत जो है वो छुट्टियों पे चली गई है और अपने अपने घरों में, अपने अपने विलों में, अपने अपने पार्कों में, अपने अपने लानों में, और उसके बाद जो है शाह साहब यहाँ की जो हवा है, हमारी हवा खुराक पर ही रहती है। सोशल मीडिया माशाल्लाह इतना एक्टिव है कि अब घर घर में जो है सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि अब नई खबर की किसी को ज़रूरत भी नहीं रहती। तो शाह साहब, ये जो सियासत बिल्कुल खामोश हो जाती है, छुट्टियों पे चली गई है, वापस आएगी और उसके बाद सोशल मीडिया भी इसको ले लेगा, तो शाह साहब ये जो खुराक की आप बात कर रहे हैं, मुहर्रम जो है, बड़ी खुशी की बात है कि मुहर्रम आखिरी प्रोग्राम जो है मैंगो का, वो मुहर्रम के बाद होने जा रहा है। तो शाह साहब ये बड़ी खुशाइंद बात है और उसमें बड़ा मुनज़्ज़म प्रोग्राम होने जा रहा है। तो शाह साहब, ये आपकी जो बातें, इसका बड़ा असर होता है, लोग बड़ी एहतियात करते हैं खुराक के बारे में, जो स्टाल वगैरह भी लगाते हैं वो भी बड़ी अब एहतियात करने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, सबसे बड़ी अच्छी बात है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोगों की सेहत अच्छी हो, खुराक अच्छी खाएं, उनकी फिटनेस अच्छी हो। शाह साहब, आप क्या कहेंगे?
1: ये बिल्कुल आपने सही बात की है। कुछ लोग जो है वो 24 घंटे अपनी वर्दी पहनते हैं। एक जर्नलिस्ट वहाँ, वो किसी किस्म का भी रिपोर्टर हो, तजिया नगार हो, वो हर चीज की खबर लेने के ऊपर हर वक्त जो है वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। नंबर दो पे पुलिस वाला जहाँ पे भी जाएगा वो यही होगा। इसी तरीके से जो जज होते हैं, वो एक होता है मजिस्ट्रेट की मैं बात नहीं कर रहा, एक जज होता है, जो जज होता है कोर्ट का, वो 24 घंटे जज होता है। और इसी तरह सियासतदान जो है, ये सियासतदान कभी भी गैर सियासी नहीं हो सकता, ये छुट्टियों पे हो जहाँ पे भी हो ये सियासतदान होता है। लेकिन कुछ लोग जो सियासत को समझते हैं कि ये बड़ी इजी है, बड़ा आसान है इसको समझना, और उनको सॉरी टू से, मैं माफी चाहता हूँ कि उनको सियासत की ABC का पता नहीं होता, लेकिन वो कुछ किस्मती से या अपने इलाके के, अपने खानदान की वजह से वोट लेके तो वो बन तो जाते हैं सियासतदान, लेकिन उनको असल जो, जब तक कि वो सही पार्लियामेंटेरियन नहीं होंगे, पार्लियामेंटेरियन का मतलब है कि जो लॉज को समझते हैं हर वक्त 24 घंटे, इनमें वही फर्क है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मजिस्ट्रेट जो होता है ना, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो होता है वो सिर्फ ऑफिस टाइम पे, और ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद वो मजिस्ट्रेट नहीं होता, वो घर जाकर आराम से सुकून से सो जाता है। लेकिन जज जो है वो सुबह, वो 24 आवर जज होता है। तो ये जो हमारे मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, इनको चाहिए कि ये मजिस्ट्रेटी से बाहर निकले और ये बकायदा जज बने और 24 घंटे और लोगों को इन्फॉर्म करें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये जो इस वक्त हालात हैं, देखे कुदरत हमें, हमारा साथ हमेशा हमें, हमारा साथ दे रही है। इस मुल्क के अंदर जो है वो 96-97% लोग जो है वो रशिस्ट नहीं है, लेकिन हम में रशिज्म कूट कूट के भरी हुई है। हम ये नहीं सोचते कि हमसे बड़ा रशिस्ट, मैं अपने आप को सबसे पहले पेश करता हूँ कि हम ये कभी नहीं सोचते कि हमसे बड़ा रशिस्ट कौन है, जो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने लोगों के बारे में गब्बियत कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो इस मुल्क के साथ कैसे ईमानदारी के साथ रहता होगा। देखिए, इन लोगों ने हमारे साथ ये असानात किए कि जब हमें जबान नहीं आती थी, हम बायोमेट्रिक थे, अंगूठा छापते, हम साइन नहीं कर सकते थे, हमें खत लिखने तक नहीं आते थे, इन्होंने लोगों से खत लुका, हम लोगों ने लिखवाए। मैं सबको मजमूई तौर पे अपनी शक्ल में देख रहा हूँ, मैं किसी की बात को एक के ऊपर तंज नहीं कर रहा, मैं सबसे कह रहा हूँ मैं भी उनमें शामिल हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पासपोर्ट, हमें जो वीजा लगा था उसके ऊपर लिखा हुआ था आबश फल्क के, हम लोग काम करने के लिए यहाँ आए, हम मजदूरी में आए, हमें आबश मजदूरी करने के लिए एक इजाजत नामा दिया गया है। हमें ना यहाँ बिजनेस का वीजा लगा, ना हमें यहाँ मेडिकल डॉक्टर का लगा, जो भी आए सबको आबश से ही मिला। तो उसके अंदर आके राजा साहब हमने यहाँ पे सुकून से रहना शुरू किया ये लोग। फिर हमारी नई जनरेशन आई, फिर उसके बाद हमारी कुछ जनरेशन बाहर से आई और उनके साथ फ्लुतनिंग यहाँ पे आ गई। मैं फ्लुतनिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ फ्लुतनिंग को अमन से रहना चाहिए, जहाँ जाए अगर उनके अपने मुल्कों में फसाद हो रहा है तो वो दूसरे मुल्क के अंदर जाके वही फसाद पैदा ना करे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम जो है वो हमारे लोगों ने किया, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा सहूलियात उनको मैसर थी फ्लुतनी को, तो वो इसलिए कानून का एहतराम करने से वो कासर रहे। और इससे आकर इस मुल्क के अंदर का कानून जो है इनको, इन्होंने एक चीज याद रखे कि इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील नहीं किया। अगर ये चाहते, अगर ये इतने ही राशिस्ट होते तो राजा साहब मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन को जो आता है उसको उसके अंदर अदल बदल करते, उसको उसको उसको तब्दील करते ताकि कल को कोई चैलेंज ना कर सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ फोर्सेस जो है, एक फोर्सेस जो यहाँ पे आती है, हमने कई दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं, इन्होंने उन लॉ फोर्सेस को कानून की थोड़ी सी छक्कल दी और वो लोगों पे एप्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ इन्होंने एक ये भी चीज हमारे रख दी कि अगर हम इन लॉ फोर्सेस से हम तंग हैं और हम यहाँ पे 50,000 आदमी के सिग्नेचर लेके उनको पेश कर देते हैं कि भाई आप जो हमारा अकलीती तकबा है आप हमें अजियत में रख रहे हैं, तो ये उस लॉ फोर्सेस को फौरन खत्म कर देंगे। या कोई पार्टी जो है, जो हमारी हमदर्द है इस मुल्क के अंदर, वो इस फोर्सेस को पार्लियामेंट में पेश करेगी, फिर उसको लॉ फोर्सेस बनाकर उसके ऊपर 3 दफा बहस होगी और अगर वो मंजूर हो जाता है तो जो पुराना सख्त कानून होता है उसको ये डिमोलिश खत्म कर देते हैं। तो राजा साहब, क्या हमारे सियासतदान इस चीज पे बात करते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि हम क्या बात करेंगे? देखिए, इंग्लिश सिस्टम ने किसके लिए वोट लिए, SF ने किससे वोट लिए, सोशल डेमोक्रेट ने किससे वोट लिए, रेडिकल वेंसा ने किससे वोट लिए, डेमोक्रेट ने किससे वोट लिए, ये सारी की सारी हुकूमत में बैठ गई फॉरनर से वोट लेके और इन्होंने वही अमल किया है जो ब्लू ब्लॉक करने वाला था। हो सकता है कि ब्लू ब्लॉक इतनी सख्ती ना करता, इतने ज्यादा एग्रीमेंट ना करता, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस कानून को सख्त करने की बजाय और सख्त कर दिए। इनके जो वजीर हैं, जो इनके इंट्रोगेशन के वजीर हैं, माफ कीजिएगा, उनको उनको पता ही नहीं कि इंट्रोगेशन कैसे होती है। वो वजीर बनते हुए ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जैसे कि हिटलर ने नाजियों यहूदियों के खिलाफ किए थे। ये चीजें जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, सियासतदान को सियासत करनी चाहिए लेकिन कुछ अपनी पार्टी वैल्यूज को लेकर चलना चाहिए। सोशल डेमोक्रेट एक ऐसी पार्टी थी जो बिल्कुल इंसानियत के हक में चलती थी, उसमें से बहुत सारी पार्टी जो है वो बाहर निकली और उन्होंने जो है डेंसफॉल के पार्टी और इस तरह के रूप अख्तियार किए। लेकिन सोशल डेमोक्रेट बड़े नरम पॉलिसी रखती थी, इनके बॉमिस्टर जो थे ईसा हॉय में, ब्रॉनबी में, कोपेनहेगन में और
0: नजरियाती सियासत की जाती थी। शाह साहब देखे ना, अगर आपको किसी ने इस्तेमाल करना हो तो वो इस्तेमाल करके उसके बाद क्या करता है, इसी तरह पार्टियां इस्तेमाल कर, वोट लेनी हो तो वही काम करते हैं, किसी ने हमें इस्तेमाल करना है तो वही यही काम करता है। तो शाह साहब कहीं डिफरेंस नहीं है। जो आपकी बात बड़ी आपने की जो हमें पहले नहीं पता थी, अगर ये रेसिस्ट होते तो अपने कानून में तब्दीली करते, इन्होंने अपना वही कानून रखा हुआ है। तो शाह साहब कमजोरियाँ हमारी अपनी होती हैं, हम इस कानून की पाबंदी नहीं करते, जहाँ छोटा सा सुराख ढूंढते रहते हैं कि कोई सुराख मिले, जिस तरह आपने जिक्र किया पहले के वो जो किसी कीड़े का जिक्र किया, उसके बाद वो जिसके बाल होते हैं उसे जो है वो ख़ारिश पैदा हो जाती है, उसके बाद वो तितली बन जाती है। तो शाह साहब यही चीज़ें साथ साथ चलती रहती है, अगर हमारे सियासतदान संजीदा नहीं होंगे, लोकल भी और दूसरे भी, तो शाह साहब गुलामी के पट्टे अगर अपने गलों में डालेंगे तो 1400 पहले तो साल पहले ये पट्टा निकाल दिया गया था, लेकिन अब हर बंदा ये पट्टा डलवाना चाहता है। शाह साहब मैं और आप क्या कर सकते हैं?
1: हम लोग तो वही कर सकते हैं कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आपके पास कोई इलम है आप उसको फॉरवर्ड करें। आप देख लें कि मैं भी अभी अपने पोती के साथ घर आया हूं और आपने टेलीफोन किया, मैं यहां पे बैठ गया हूं और रेडियो पे लोगों को वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो उनके लिए बेहतर है, जो उनके लिए जरूरी है, उनको इन्फॉर्म कर रहा हूं। और आप भी रेडियो खोल के बजाय आप इस वक्त कहीं बाहर बीच में हो या किसी बाग में बैठे हो या अपने बच्चों के साथ आगे पीछे घूम रहे हो, आप भी एक बंद गर्म कमरे के अंदर बैठ के आप भी ये चीजें जो है वो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। आपको इस चीज का कोई पैसे नहीं मिलते कि आप आके तो बैठ जाए इस गर्म मौसम में, आप रेडियो को एक दिन के लिए बंद भी कर सकते हैं और उससे कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जो लोग वाइज लोग हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा दूसरों से, हमारा दीन जो है इस्लाम, ये डिस्कवरी की बात करता है, ये कहता है कि आप सवाल और जवाब करें, ताकि जब तक आप मुतमिन नहीं हो जाते, जब तक के आपको वो पॉइंट जो आपने रेज किया है उसका हल नहीं मिल जाता, तो आप उसको जारी रखें। इसको बहस नहीं कहा जाता। हमारे हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या आलम लोग हैं, वो इन चीजों को कहते हैं कि नहीं, जो हमने बात कर दी है इस पे बहस नहीं हो सकती। तो ये गलत बात है। आप सीखते ही उस वक्त है, आप स्कूल में क्यों जाते हैं? आप घर में भी बैठ के किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में इसलिए जाते हैं कि टीचर आपसे पूछता है, आपका इम्तिहान लेता है, आपसे मुख्तलिफ सवालात के जवाब करता है, आप पब्लिक में बच्चों में खड़े होकर उसके सवाल का जवाब देते हैं। अगर आप गलत बोलते हैं तो आपको डांट भी पड़ती है, आपको शर्मिंदगी हासिल होती है कि पूरी क्लास में मैं ही सबसे ज्यादा नालायक हूँ, कि मुझे ये चीजें नहीं पता। तो ये चीजें जो है, इल्म जो है, इसके लिए आपको बोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है अगर कान का गले का स्पेशलिस्ट है, तो वो टांग पांव का या किसी हाथ का नहीं हो सकता, स्किन का नहीं हो सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसी तरह जो स्पेशलिस्ट है, जो सर्जन है, उनकी ड्यूटी अलग है। ये हर चीज जो है, छोपा जो है, अलग है। अब आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप एक रेडियो चला रहे हैं, आपको पता है कि मैंने किस सब्जेक्ट के लिए किस बंदे को मैंने लेना है, मैंने उसकी उससे इंफॉर्मेशन निचोड़ कर बाहर निकलवानी है और वो मैंने लोगों तक पहुंचवानी है। और इसमें आप अल्लाह ने आपको पावर दी है, आप कामयाब हो रहे हैं, आपका प्रोग्राम जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से सुना जाता है, हर जगह सुना जाता है, और इसकी मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ और इस चीज का मुझे इल्म है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ये फजूल बातें हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि 2017 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक, जब यहाँ कहा गया था कि अगर आपको ये पुराना टैक्सी लॉ जो है ये पसंद नहीं, तो आप आए प्रोटेस्ट करें, हम इसको तब्दील कर देते हैं। आप लोगों ने अगर प्रोटेस्ट किया तो गलत तरीके से किया, आपने आईन को पढ़े बगैर, कानून को पढ़े बगैर, इस कानून को बनाने वाले कौन है, हर चीज को समझे बगैर आप लोगों ने इस रेडियो के प्रोग्रामों की जो स्पेशल आप हर हफ्ते हर रोज चलवाते थे और मैं आप मेजबान होते थे और मैं यहाँ पे एज ए तजिया नगार उसके आपको इंफॉर्मेशन लोगों को देता था, लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये बंदा क्या बातें कर रहा है, क्या बंदा बातें कर रहा है। अब आप ये देखें कि लोगों ने टैक्सी तो रही नहीं, अब तो ये फर्म्स बन चुकी हैं, अब तो ये वो बंदे ड्राइवरों को इंसर्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि आप बोनमैन जो है वो बोनमैन ही छोड़ दें और ये फिक्स पे ले और अपनी छुट्टियों पे जाए, फिर ये पहेंगे इनको मिलेंगे। देखें आप कम अज कम 5-6 लाख की गाड़ी आप डालते हैं और उसके बाद आपकी वो गाड़ी भी नहीं है, तेज चल गई आपकी गाड़ी खुल जाएगी, कोई ऐसा जुर्माना हो गया, आपका लाइसेंस चला गया, आपको नुकसान है, आप एक मजबूर है, क्योंकि ये वो टैक्सी नहीं है, वो हक नहीं आपको मिला।
0: जो ये जो नई फर्में आ रही हैं, आपके पास कोई तजुर्बा है? ये चल पड़ी है, इसमें लोग मुलाजमत उन्होंने शुरू कर दी है, उनका तजुर्बा क्या कहता है?
1: जी वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे कुछ लोगों से बात हुई है, बल्कि मैं खुद सोच रहा था कि ये जो ये एज ए पेंशनर भी अगर मैं इस कंपनी में कुछ दिन वीकेंड लगाऊं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक फेस्ट लोन पे बात कर रहे हैं, ये आपको पक्की तनख्वाह पे बात कर रहे हैं, ये आपका टैक्स देंगे, ये आपकी बीमारी के पैसे देंगे, ये आपको फुल राइट्स देंगे, आपको किसी किस्म का खतरा नहीं। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी पकड़ी जाती है, कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो वो कंपनी जवाब दे, आप जवाब देनी है, ये चीज है। और अगर ये जो अभी आपके पास लाइसेंस है, जो आपके पास ये जो टिलैल से है, आपके पास बबीलिंग नहीं है, कोई बंदा ये मुझे साबित कर दे कि उसको डेनिश में बबीलिंग कहते हैं, टिलैल से और बबीलिंग में जमीन और आसमान का बाई लॉ फर्क है। बबीलिंग वो होता है जो आपकी जात को इशू किया जाता है, आपकी एंकर गवर्नमेंट हो या आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई चीज खोलते हैं, तो उसका आपको बबीलिंग मिलता था, वो बबीलिंग आपके नाम पे होता था। अगर वो पुलिस के या किसी और वजह से आपको बंद करना होता था तो वो टैक्स वाले या पुलिस वाले आपको अदालतों में लेके जाते थे। अब है टिल्डर से इजाजतनामा, ये इजाजतनामा वैसी है जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको वो एक नंबर प्लेट देते हैं, वो नंबर प्लेट आप गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं। जब आप एक दिन इंश्योरेंस नहीं देते तो वो पुलिस को फोन करते हैं तो वो आके आपकी वो नंबर प्लेट जो है वो टिल्डर से जो गाड़ी को चलाने का है वो उतार लेते हैं और आपकी गाड़ी के ऊपर वो अपना फीता लगा जाते हैं पुलिस वाले के, ये अब चलने के काबिल नहीं जब तक के आप दोबारा खर्चा ना करें, दोबारा इंश्योरेंस ना कराएं या कोई चीज ऐसी पास ना कराए गाड़ी को। तो ये टिल्डर से जो है टैक्सी वाला का ये बिल्कुल वो टिल्डर से है। अब ये जो इतनी इतनी बड़ी कंपनियां आ गई हैं इसके अंदर मुलाजमत करने से आपको आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो गया।
0: तो शाह साहब ये जो कम्यून में लोग बैठे होते हैं, जो कम्यून की एक पार्लियामेंट होती है, हर जगह को होती है कम्यून, जहाँ जहाँ कम्यून हैं सारे बैठे होते हैं, उनका जॉब क्या होता है? दूसरा शाह साहब, आजकल आपने देखा कि ये शिकायत हमें भी मिलती रहती है कि ये जो बाहर खिड़कियाँ तब्दील होती हैं, सड़कों पर काम हो रहा होता है, जगह जगह जो है स्क्रू लगाए जा रहे होते हैं, और जो पार्किंग होती है हालांकि वो कम्यून की होती है, लोग पार्किंग के पैसे देते हैं, उसके बावजूद वहाँ सफाई नहीं होती जो है ना, उसमें पेच पड़े होते हैं, गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती है, उसका फ़ायदा किसको हो जाता है? ये जो आपको जो है मदद करने वाले आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ वर्कशॉप में चली जाती हैं, टायर तब्दील किए जाते हैं, टायर फट जाते हैं, सुराख उसमें हो जाते हैं, तो शाह साहब इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, खाली हम बातें कर लेते हैं, निजी महफिलों में बैठ कर खाने खा कर हा हा करके उठ के चले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी मैंने बड़ा काम किया, मैंने खाना दिया। तो शाह साहब इस तरह तब्दीली नहीं आएगी, हम पीछे से जिस तरह फरमाते रहते हैं कि अब जो है वो पांचवी नस्ल या चौथी नस्ल जो है वो शुरू हो चुकी है, हम बाकी जो कहते हैं दूसरी तीसरी नस्ल को क्या देकर जा रहे हैं?
1: देखिए जी, आपका सवाल बहुत ही रेलिवेंट है, आपने दुखती राग पे इनको पकड़ लिया है। ये काउंसलर का काम होता है, काउंसलर अपने साथी काउंसलर को जो है वो होम मिनिस्टर बनाता है और वो बॉम्ब मिनिस्टर बनाता है, और ये जो मुख्तलिफ अपना टेक्निकल अदारे हैं इनके नीचे आते हैं, उनके बॉम्ब मिनिस्टर जो आते हैं ये काउंसलर ही चुनते हैं और फिर वो बनते हैं पार्टी है, जो है उनके काउंसलरों के दो तीन मुख्तलिफ पार्टी बनकर उसको चुन लेते हैं। अब इन काउंसलरों का काम ये होता है कि इनके आगे जाकर बीन बजाना, इनको बताना कि भाई शहर में ये चीज हो रही है, फलानी चीज हो रही है। अब सबसे ज्यादा ड्राइवर जो है टैक्सियों में वो पाकिस्तानी और फॉरनर, नंबर दो पे जितनी वाहन चल रही है इसमें मेजोरिटी फॉरनर है, बसें जितनी चल रही है इसके अंदर मेजोरिटी फॉरनर है, बड़े लॉस वोन जो चल रही है इसके अंदर भी आप फॉरनर बहुत ज्यादा आ गए हैं, डेंस कम हो गए हैं। तो ये जो तकलीफात इनको पहुंच रही है, इनके इनके सरपराह कौन है, इनको इनकी नुमाइंदगी सियासत में कौन कर रहा है? ये डेंस नहीं कर रहे, ये काउंसलर वो काउंसलर हैं जो हमारी जुबान को, हमारे माशरे को, हमारी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास इस चीज को, उनके पास इन चीज को उनको हजार दफा गुस्सा लगे, मैं ओपनली कह रहा हूँ लाखों बार लगे, 55 साल हो गए, 56 साल इस मुल्क में रहते हुए अभी तक हमारे यंगस्टर्स को ये पता नहीं लगा कि हमारे नेबर की प्रॉब्लम क्या है। एक ही अपगांग में रहते हुए जब आपको ये नहीं पता कि सुबह आप उठ रहे हैं और आपके बुए के सामने जो फुटपाथ है उसको खोदा जा रहा है, उसमें क्या चीज हो रही है आपको ये नहीं पता, आप आपका निकलना दुश्वार हो रहा है, आपके हमसाय में क्या हो रहा है आपको ये नहीं पता, जब आपको ये नहीं पता तो आप इंटीग्रेट कैसे होंगे? आपको इंटीग्रेट होने के लिए इस माशरे की तकलीफात को अपनी तकलीफात समझनी पड़ेगी, इस लोगों को समझने के लिए आपको फ्यूचर में, और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब लोग सरे आम बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि किसी ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी पहले बैठा हुआ है या ऐसा बंदा जो पहले काम कर रहा है उसको वोट दिया जाए, नए बंदे को मत आजमाओ, क्योंकि नया बंदा जो है वो फैमिली बेसिस पे या किसी बात पे आएगा तो वो यही तकलीफात जो है 4 साल में आगे भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ओपन एगन के अंदर, बेस्ट लाइन के अंदर ये सारी चीजें जो है, ये गंदगी जो फैली है इसी की वजह से ये गोले आई हैं, इसी की वजह से ये जो बम्बू कार्ड है, ये जो लावा आई है, इसी वजह से आया कि यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा फैल गई है, कम्यूने जो है वो सफाई नहीं कर रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे घर के सामने एक वैस्करी है, उसके साथ एक डस्टबिन लगा हुआ है। वो डस्टबिन में वो आता है, प्लास्टिक के लफाफे निकाल के ले जाता है और उसके अंदर नया लफाफा लगा जाता है, लेकिन नीचे जो गंद पड़ा हुआ है वो नहीं उठाता। वो 23 दिसंबर की मेरे पास वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वक्त की वहां पे गंदगी पड़ी हुई है, और अब तक वो इतनी बार कम्यून को भी बात करने के, वो कहते हैं हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, हमारे पास बंदे छुट्टियों पे चले गए। ओ भाई, ये काउंसलर्स ने करना है, वो डायरेक्टर्स को दे देता है। डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर भी इंसान है, उसने सुबह उठना है, पहले अपने बच्चों को जाके बांधने में या स्कूल में छोड़ना है, फिर वो आएगा, वो काम करेगा, फिर वो 2:30-3 बजे आप देखें कि कितनी ट्रैफिक हो जाती है, आप टेलीफोन करके देखें कि वो अपनी सीट पे नहीं बैठा होगा, सेल्स मैन ने कहा तो जी होना गो फॉर डे, अच्छा जब वो ये कह देते हैं तो आज के देखिए वो छुट्टी पे चले गए। अच्छा, वो जो गवर्नमेंट का काम होता है वो रस्ते में कंप्यूटर पे या घर में जाके करते हैं, और आप उनके साथ बात नहीं कर सकते, बजाय वो एंस वाली होने के। हम जितने भी डेनमार्क में रहने वाले लोग हैं, जब हम यहाँ में फेल्क हो जाते हैं, हमें गूल स्विसिकिंग कार्ड मिल जाता है, तो राजा साहब हम एंस वाली होते हैं, हमें यहाँ अपनी एंस वाली का मतलब है कि यहाँ हम जिम्मेदार शख्सियत बन जाते हैं, हम मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, हमें यहाँ पे जो है वो कायदा जिम्मेदारी होने चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, चंद दिन पहले मोटरवे के ऊपर ईसाए के पास एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर किसी ने फेंका हुआ था, यकीन कीजिए कि वो लॉस्ट वन गुजरी है, तो उसके बैक टायर के ऊपर या फ्रंट टायर के ऊपर से वो स्लिप हुआ है, और इतनी जोर का वो फटा है, और शुक्र है कि किसी को डैमेज नहीं हुआ, ना उसको हुआ, लेकिन हमने देखा कि वो जब फिजा, तो ये सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है
0: जो है वो नजर आती रहती है। आप देखे ना, क्या पेट्रोल पंप पर जाए, पहले पेट्रोल पंप किस तरह साफ सुथरे होते थे, शीशे की तरह बाहर से भी चमक रहे होते थे, लेकिन शीशा लगा नहीं होता, मैं सफाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब सारे पेट्रोल पंप पर आप जाए, आगे पीछे जहाँ गाड़ी धोकर खड़ी करते हैं, जो जगह धोने वाली है, हर तरफ आपको वो सफाई नजर नहीं आती। सफाई है लेकिन गंदगी पड़ी होती है शाह साहब, गंदगी से मुराद है जो दूसरा गंद होता है।
1: देखिए जी, सबसे बड़ी पहले तो ये चीज है कि हम ये कहते हैं जी हम यूरोप में रह रहे हैं, यकीन करें कि हम जिस मुल्क से आए हैं वो उस वक्त की जनरेशन जो थी बड़ी साफ जनरेशन थी, उस वक्त के लोग जो थे वो खिदमतकार लोग थे, और वो मैं आपको ये बात हल्फन ये कहता हूँ कि मैं बेशक शहर में कैंटो में पैदा हुआ हूँ, कैंटो में रहता था, शहर में रहता था, लेकिन मेरे रिलेटिव जो थे, मेरे खानदान के लोग, वो बाहर गांव में भी रहते थे, जो जमींदार करते थे या दूसरे गांव में रहते थे, जब वहां जाते थे तो मैंने ये खुद देखा है कि अगर कोई भैंस गुजरते हुए कोई वो अपने पॉटी कर देती थी, पखाना कर देती थी, तो वो बेलचा ला के या कोई लेके पतली सी तो उसको साइड पे कर देते थे, उसको उठा के ले जाते थे, ताकि लोगों को की गुजरगाह जो है वो साफ रहे। अब आप जाए आप देखें कि प्लास्टिक के लिफाफों में गंदगी डाल डाल के नालिये बंद कर दी है, नाले बंद हो गए हैं, फ्लोट कर रही है, कानून की वही चीज यहाँ पे है। आप ऐसे ऐसे जाके बात करेंगे जी आप पाकिस्तान के लिए इतने यहाँ पे लोग हैं, आप पाकिस्तान के लिए फ्लाइट करें, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं जी, और सबसे आखिर में ये कहते हैं कि क्या आप इस काबिल है कि आप हमारी एयरलाइन में सफर करें, तो आदमी लाजवाब हो जाता है। बच्चों को बाहर पेशाब करवा देते हैं, टॉयलेट गंदा कर देते हैं, खुद जो लोग हैं वो जो मोरबी टाइप हमारी उम्र के लोग हैं उनको ये बात नहीं समझी कि आप कागज इस्तेमाल कर ले, वो वहां पे संजा करना शुरू कर देते हैं, वो सारा पानी नीचे पच पच पच पाओ के साथ सारा उनका कार्पेट, वो इसलिए कोई फ्लाइट्स, यही चीजें हैं कि दूसरी KLM वाले अपना जर्मन एयरलाइंस जो दूसरी, ये क्यों नहीं पाकिस्तान इनको लेके जाती, इसीलिए कि ये कहते हैं कि आप लोग इंडिया में जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में, बांग्लादेश में जा रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को यूरोप में रहते हुए भी आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा। तो अगर हमने यहाँ रह के कुछ नहीं सीखा, अपने आप को एजुकेट नहीं किया, हम एक दूसरे को गर्भान से पकड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की गबियत करते हैं, एक अब आप ये देखें कि एक नया मसला इस मुल्क के अंदर आ रहा है। अब हमारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं। मैं अगर काम कर रहा हूँ एज ए टैक्सी ड्राइवर, मेरी लोन सेल क्या है 30-35 हजार करोड़, कार्ड के क्या मुझे मिल रहा है 20-25 हजार करोड़, और मैंने एक बड़ी गाड़ी जो है, बहुत बड़ी गाड़ी जो है उसको लीज कर ली है। अब वो जो गुजरने वाला है, देखने वाला, वो कहता है कि ये तो टैक्सी चला रहा है लेकिन इसने गाड़ी इतनी, ये कहाँ से पैसे ला रहे, ये सारी जो इससे इस मुल्क के अंदर देखे, अगर आपने छोटी सी छोटी सी सुजुकी भी ले ली है, मेक नो डिफरेंट, पर्सनैलिटी मेक डिफरेंट करती है। आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक ईमान होना चाहिए, कुवत होनी चाहिए, क्या पता फर्क पड़ता है। मैंने भी तो किया कंट्रोल रखी है, इतने साल रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
0: अब तो आगे दूसरी ले ली है। का निचोड़ निकाला जाए तो ये बातें तो कम्यून में होती हैं, सफाई सुथराई की जो बातें होती हैं या जो चेकिंग चेक एंड बैलेंस होता है। अब देखे ना, पहले दुकानों पे जो वाह को चेक किया जाता था, मैंने देखा कि डॉक्टर दुकानों पे 3-3, 4-4 बार आते थे हफ्ते में, सफाई को देखते थे। इसी तरह जो ये पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं या खाने पीने की जगह या पब्लिक प्लेस जितने भी होते हैं, इनकी सफाई की चेकिंग होती थी। इसी तरह पार्कों में आप चले जाएँ तो पार्कों की देखभाल जो की जाती थी। तो शाह साहब, इसमें जिस तरह आप कहते हैं कसूरवार, तो लोग खुद भी हैं, गंद डालते वक्त वो भी ख्याल नहीं करते, लेकिन कम्यून में भी उस तरह की अब बातें नहीं हो रही।
1: देखिए जी, आप जाके क्लियर करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जब आप वहां पे जाके इस बात को इग्नोर कर देते हैं, आप इस बात को मामूली बात समझते हैं, तो आप आपको आप सिर्फ एक अपना CBR जो है उसको हाई करने के लिए आप ये बात करते हैं। ज्यादातर डेनिश लोग जो है, आजकल के यंगस्टर डेनिश लोग, वो सियासत में इसलिए आते हैं कि अगर वो उनकी स्कूलों के जो क्रैक्चर होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते, तो उनको जॉब के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़े से इशहार होते हैं, वो आ जाते हैं सियासत के अंदर, और वो पार्टियों के अंदर नंबर चंबर बना के कुछ थोड़ा सा इलेक्टेड एक दफा हो गए तो उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो सियासत में रहा है, ये खूब जानता है कानून है, उसको जंप करके तो वो अपने से ऊपर वाले के ऊपर जॉब में चला जाता है, उसके नीचे वाला बेशक PhD करके बैठा हो, तो ये चीजें इनको मिलती हैं। तो हमारे जो लोग हैं ये सारा दिन कामों पे जाते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं और जॉब्स करते हैं, और जब रात को इनके 6-7 बजे के बाद इनके वो जो मीटिंग्स होती हैं, जो इनकी जैसे आपने कहा छोटी सी असेंबली लगती है, तो वहां पे ये सिर्फ आते हैं बैग पकड़ के, जो इनका बंदा वहां पे बैठा होता है पार्टी का जो हाजिर होता है, उसको कहते हैं मेरी हाजिरी लगी है, मैं आया हूँ, ओके, पेशाब के बहाने बाहर निकले, काफी पीने के बहाने बाहर निकले, और इनको रोकने वाला कौन ही, एक दफा इन्होंने शक्ल दिखा दी, कैमरे में आ गए, ये घर चले गए। ये कोई बहस नहीं करते, ये कोई वहां पे डिस्कशन नहीं करते, लॉ फोर्सले पेश नहीं करते, कोई फोर्स ने पेश नहीं करते। मैं एल्बर्सलोन में रह रहा हूं, मैंने आज तक नहीं सुना कि एल्बर्सलोन को पीआर क्रेस्को ने डेनमार्क की सबसे गंदी तरीन, सबसे जालिम तरीन कम्यून का, और ये अखबारों में और मीडिया में आया, और इसके ऊपर हमने भी क्लेम काफी से पहले भी करते थे, लेकिन क्या आज तक यहाँ किसी काउंसलर ने खड़ा होकर कहा है अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी असेंबली के अंदर, के ये जो कानून है इसको हम हाईलाइट करते हैं, इसको हम मीडिया पे लेके आते हैं, इसको तब्दील करना चाहिए, ये जो लॉ फोर्स ने बनाई हुई है अपना पार्लियामेंट ने, ये हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, हमारे आवाम जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही है, क्या ये बात करते हैं? नहीं करते, क्यों कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं कि ये अपने बच्चों को संभाले, अपने फैमिलीज को पहचाने, ये शादी ब्याह पे इन्होंने जाना होता है एज ए काउंसलर, या इन्होंने दूसरी जगह जाके प्रेजेंट करना होता है जी कि मैं फलानी पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं फलानी पार्टी का सदर हूँ, ये चीजें जो है इससे तरक्की नहीं आती। तरक्की उसी वक्त आती है जब आप बैठ जाए, आप काम करें। आप देखते नहीं है कि डैनिश कैसे काम करते हैं? क्या आप देखते हैं कि ये डैनिश जो फॉरगेटिंग मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये किसी शादी ब्याह पे जा रहे हैं,

0: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। अब जो डेलीगेशन यहाँ पिछले हफ्ते चंद दिन पहले यहाँ पे आया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अम्बेसी ने किन लोगों को मिलने दिया, किन को नहीं मिलने दिया, क्या उनके पास कोई ऐसा मैसेज गया या नहीं गया, और चंद लोगों को इस तरीके से वो इतने दिन रहने के बावजूद भी उनका पब्लिक पब्लिक से क्या, उनका अपनी नून लीग में ही जो चैम कहीं हो रही है, मुझे ये शोर तो नहीं है लेकिन मुझे ये लोगों से पता लगा, वो अपनी नून लीग की पार्टी या पीपल पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी है या काफ लीग जो पीपल पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी है, उनमें से किसी के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। और
1: शाह
0: अगर
1: साहब,
0: ये
1: ये
0: लोग
1: तो
0: इसी
1: खबरें
0: तरीके से
1: चलती
0: आते
1: रहेंगी ना शाह साहब। देखें, हमारा काम है कि चीज़ों को देखना, एनालाइज करना। शाह साहब, अक्सर हम कहते रहते हैं क्या ये जो लोकल तंजीमात हैं, ये लोकल सियासी पार्टियां, मैं तो इन्हें पार्किंग प्लेस कहता हूँ कि बड़ी जमातों की ये पार्किंग प्लेस होती है, और ये आकर गाड़ियाँ अपनी पार्क अपनी कर लेते हैं, आपको होटलिंग भी मिल जाती है, खाने भी मिल जाते हैं, TC भी मिल जाती है, आगे पीछे भाग दौड़ भी शुरू हो जाती है। तो शाह साहब, जब हर चीज़ के पीछे हम खुद कसूरवार हैं तो हमें किसी को भी कसूरवार नहीं कहना चाहिए। क्या हमने कोई मुश्तरका कोई ऐसी चीज़ की है? जब कोई हम नाम लेते हैं तो कहते हैं जी अपनी नमाइश के लिए करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं। आप नाम लेते हैं तो आपको कहते हैं शाह साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो शाह साहब, कसूरवार हम खुद खुद लोग हैं, तो हम अपना कसूर उठा के दूसरे की तरफ डालने की कोशिश करते हैं।
0: देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरे ख्याल में चंद दिन पहले यहाँ पे जो हिंदू बिरादरी रहती है, उन्होंने वॉल्स पैलेस के अंदर बहुत बड़ा अपना फंक्शन किया है। उन्होंने अपनी बकायदा वो अपने वो भगवानों की वो मूर्तियां, ये वो डांस, ये वो उन्होंने वॉल्स पैलेस में पूरा किया। किसी ने एतराज नहीं, पूरे डेनमार्क में किसी ने एतराज नहीं किया, किसी डैनिश ने एतराज नहीं किया। हमारे में क्यों है? क्योंकि हम आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाते हैं। हम लोग ऐसी चीजें वहां पे ऐसे स्पीकर को ले आते हैं, ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर सियासत का पहलू आ जाता है। और जब ये चीजें आती हैं, सियासत का पहलू आ जाता है, आप समझते हैं जी कि हम हमसे हमें कोई कुछ नहीं कह सकते। तो जब आप पे आ पड़ती है तो वो क्या नाम है, फिर वो मुश्किल तरीन टाइम होता है। तो हमारे लोगों ने यहाँ के कानून को उन्म्यूट करना, यानी कि इन लोगों ने उसका नजायज फायदा उठाया है, उसके साथ नजायज हरकतें की हैं। इन्होंने हमें बैंकों में लोन दिए, इन्होंने हमारे लोन माफ किए, लेकिन जब हमने इनको मिलियंस के मिलियन के हिसाब से इनको फड्डा लगाया इन बैंकों ने, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स वालों के साथ जो हमने धोखे किए, तो फिर इन्होंने आज वो सारी चीजें हमारे लिए फैसिलिटी जो है वो बंद कर दी हैं। लेकिन जो नए आने वाले कमर हैं, और वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, पढ़े लिखे, उनके अकाउंट्स वो उसी तरह खुल रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ है
1: शाह
0: उनके
1: साहब, देखें
0: नहीं।
1: शाह साहब, देखें कि सियासी जमातों को देखें, इस मुल्क के हम रहते हैं, यहाँ हम जमहूरियत के तरीके से बात कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, इजाज़त लेकर डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने जब आगे जिक्र कर रहे थे टाउन हॉल में प्रोग्राम हुआ, वो कानून कायदे से हुआ, बाकायदा इजाज़त लेगी। शाह साहब, अगर हम कोई प्रोग्राम कराने के चक्कर में, जो पैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, तो फिर बहुत सारी मुश्किल होती हैं। शाह साहब, आप देखें पाकिस्तान की कितनी सियासी जमातें माशाल्लाह खुद कफील हैं, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी इतनी सियासी जमातें। शाह साहब, कभी मिलकर सियासी जमातों ने प्रोटेस्ट किया है कि एक कानून बनाने वाले लोग, एक पार्लियामेंट में बनाने वाले, बैठकर कानून बनाने वाले लोग, लोगों की 20-20 लाख पेंशन है, शाह साहब कभी इन सियासी जमातों ने एहतजाज किया?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको ये
1: सिर्फ
0: एक बात
1: सोशल
0: बताऊं,
1: मीडिया पे जी फलां के साथ ज्यादती हो रही है, फलां कैदी के साथ ज्यादती हो रही है, फलां मेरे लीडर के खिलाफ बात कर ली, अपनी आर्मी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगंडा शुरू कर दिया। शाह साहब, जमहूरी तरीका है एहतजाज किए जाते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट किए जाते हैं, ना कि वायलेंस की जाती है।
0: देखिए जी, ये जो आपकी बात है ना कि फौज, ये अदारे जो हैं, ये हुकूमत है, ये गवर्नमेंट है, ये स्टेट है, इसके आप वजीर आजम के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप वजीरों के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मुल्क की सियासत के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अदारों को, दुनिया का कोई भी अदारा हो या किसी मुल्क का स्टेट अदारे हो, आप उसके ऊपर अटैक करेंगे इस मीन के आपने स्टेट के ऊपर हमला किया है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए, जितना मर्जी गुस्सा हो, जितनी मर्जी चीजें हो,

0: उसे हमें बिल्कुल एक्साइट होना चाहिए। और हम लोग देखते रहते हैं सोशल डामो अपना सोशल मीडिया के ऊपर डेली नजर होती है हमारी, देखते हैं कि कौन कौन से लोग और कौन कौन सी जगह से कितनी कितनी गलत और गलीज बातें जो है वो अपने उस मुल्क के अंदर जहाँ उनके माँ बाप रहते हैं या उनके खानदानों के खानदान वहां से आए, जिस पासपोर्ट पे वो वहां पे आए, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं आज भी। लेकिन मसला फिर भी यह है, मसला यह है कि हमारे जो यहाँ के लोकल सियासतदान हैं, हमारे के यहाँ के जो सरबराह हैं पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटियों के, जिसके अंदर मसाजद भी आती है, क्या इनके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं या इनके पास कोई ऐसी चीजें हैं कि ये खाना खाने की बजाय चाय पीने की बजाय, क्या इनके पास ऐसी डिबेट्स हैं? आप ये देखें कि इन्होंने कितनी मसाजद को इन्होंने कानूनी तौर पे उनके ऊपर केसेस किए, अली मस्जिद सारे मनाजुकान ये, तो अभी तो ये आपसे पूछ रहे हैं, अब जो नेशनलिटी ले रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इन चीजों पे वो ईसाइयों को नहीं पूछते, वो हिंदुओं से नहीं पूछते, वो दूसरों से नहीं पूछते सरदारों से, वो मुसलमानों से पूछते हैं कि आप बताएं कि क्या आप कुरान की इस चीज को शरी हासिल को मानते हैं, नहीं मानते तो इधर साइन करें, हम आपको नेशनलिटी नहीं देंगे। तो इसके ऊपर
1: शाह
0: जो
1: साहब, एक
0: सबसे
1: छोटी सी
0: ज्यादा इन्होंने
1: बात है,
0: बड़ी
1: प्रोग्राम
0: अकलियत
1: को
0: है वो
1: क्लोज करते
0: मुसलमान
1: हैं।
0: है।
1: शाह साहब, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। शाह साहब, आप देखें, हम लोग आज भी करते हैं, उम्रे भी बेताशा करते हैं, और उसके बाद मसाजिद में भी जाते हैं, दुरूद ख़त्म भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कोई ऐसा चीज़ काम नहीं है जो हम नहीं करते। शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस से भी हम मनाते हैं हर साल की तरह, हर अदारों में, हर सेंटर्स में, हर कल्चर सेंटर में सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुरूद व सलाम की महफिलें सजती हैं। तो शाह साहब, इतना करने के बावजूद हम में खामियाँ क्यों हैं?
0: हमें यह है कि हमें रबियत भरी हुई है, हम सबसे बड़े राशिस्ट हम हैं और सबसे बड़े रबियत करने वाले हम हैं, और हमें जब जब तक हमें इत्तफाक नहीं होगा हमें कोई बरकत नहीं आएगी। जिनके दिन हम मनाते हैं हम उनकी तरफ ही नहीं देखते कि हम अपने करदार पे इनसे कुछ सीख लें, और हम वो हमें क्या सिखला रहे हैं, उनकी शहादतें किस चीज पे है, हम अपने आप में एक इत्तफाक पैदा करें। हम एक 70, आपको मैं ये याद बता दूं कि 70s 80s 90s में हम यहाँ मुसलमान इसलिए खुश थे कि हमारे में फिरकाबाजी नहीं थी, हमारे में एक इस्लामिक सेंटर था, सारे सुन्नी शिया वाबी सब वहां जाते थे, और अगर किसी ने आस्ता आस्ता अपनी जमातें बना ली तो वो फिर इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन अब तो हर
1: शाह
0: कल्चर
1: साहब,
0: सेंटर
1: अब
0: जो
1: भी
0: है,
1: दौड़ लगी हुई है अपनी मसाजिद बनाने की।
0: बस बस यही है, बाकी अल्लाह इनको हदायत दे, और
1: शाह
0: हम तो
1: साहब,
0: इनको ये
1: हमारा
0: कह रहे हैं
1: काम
0: कि
1: है, हम कोई पुलिस मैन नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। कोई भी अपनी राय देना चाहता है, इस पर बात करना चाहता है, जो कुछ आपने कहा सुना, जो लोगों ने सुना, हमारे सामने नाज़रीन ने सुना, कोई भी अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए शाह साहब हमारा टाइम हाजिर है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आकर सवाल करें, मुझसे सवाल करें, ना जब हम बात कर रहे हैं इस तरीके से आकर सवाल करें कि शाह साहब आप ये गलत बात कर रहे हैं, हमें बताएं, मैं उनको आइन का, फिर उसको जो लॉ फोर्स है, जो फोर्सेस हैं वो बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि किस पार्टी को आपने वोट दिया। ये जिन पार्टियों को हमने वोट दिया वो हमेशा ही स्टूड पार्टी होती है, वो हमेशा ही गवर्नमेंट के को सपोर्ट करती है, और वो कानून कवानीन जिनके खिलाफ हमने उनको वोट दिया था कि ये उसको जाकर खत्म करेंगे, वो नहीं कर पाती और ना ही वो इसके ऊपर बात करती है। तो लिहाजा हम जान बूझ कर इन पार्टियों को वोट देते हैं, और इससे बेहतर यही है कि हम डेंथ फलके पार्टी या ऐसी पार्टियों को वोट दे रहे कि वो कम से कम आएंगे तो उनको ये तो शर्म होगी कि डेनमार्क का नाम बदनाम होगा अगर हम सबको यहाँ से निकालेंगे। कम से कम उनको चांस देना चाहिए कि आओ भाई, आपने हमें निकालना है, आओ निकालो, बनाओ जहाज, कितना खर्चा करोगे, दुनिया आखिर कम से कम बोलेगी जैसे स्पेन बोला है अभी, हर एक चीज इस तरह कौमें बोलती हैं,
1: कॉमें
0: कौमें
1: बोलती हैं।
0: किसी
1: शाह
0: को
1: साहब,
0: अकेला
1: आपका
0: नहीं
1: बहुत
0: छोड़ती।
1: शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ होंगे।
0: जी अल्लाह हाफिज, जी अल्लाह हाफिज।
1: समय नाजरीन, ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो कि आपको मैसेज दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। कोई और भी देना चाहता है उसके लिए, अगर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हम अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: सही है। और आपको सियासत में जाने तो आपको सियासत का क्या कहते हैं रुख देखना पड़ता है और सियासत को समझने की जरूरत होती है। बस अब देखिए, इस शहर में मैं बैठा हूँ और हम रहते हैं स्लॉट में। हमारा जो मेयर है टेक्निकली उसका बैकग्राउंड खाली नौवीं क्लास है, और यहाँ से आप देख लें तो उसने कहाँ से स्ट्रगल करके आज कहाँ पर पहुंच गया। तो ये एक अवसर, ये क्या कहते हैं, एक होता है आपका जज्बा, आपका क्या कहते हैं नॉलेज, आप सीखना चाहें, आप क्या करना चाहें, तो ये है। दूसरी बात है, टांगे खींचना, ये भी एक अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और फॉरन कम्युनिटी हो उसमें है। तो ये चीजें तो है, मगर बस इससे ये है कि इससे बंदे को हार नहीं माननी चाहिए और अपने काम पे फोकस होना चाहिए और अपनी अपनी क्या कहते हैं अपनी वेयर से रहना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर देखिए कि कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है, तो फिर वहां से उसको चूज करें। क्योंकि आप एक बंदा भेज देंगे जिसको पता ही नहीं होगा तो वो 4 साल क्या करेगा। तो ये आप देखें कि बंदे का विजन क्या है, बंदा करना क्या चाहता है, बंदे ने काम कौन सा सीखा हुआ है। सबसे पहले जरूरी होता है कि आप कुछ बोर्ड्स वगैरह होते हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग लेके आप है, और आपको वो मिल जाए तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। तो ये चीजें आपको बड़े गौर से करनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि मैंने भी कल अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज कहूंगा कि इंसान को जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमें इन इन इस इन सिस्टम के हवाले से चलना चाहिए है। अनफॉर्चुनेटली मैं मुझे पता है इससे मैं बड़ा टारगेट होऊंगा, मगर मैं खुद कल विटनेस था कि मैं ये मैंगो फेस्टिवल में मैं हैरान हूँ कि ये कैसे चल गया कि पुलिस नहीं आई इस फेस्टिवल के अंदर। क्योंकि जिस तरह से लोगों ने वहां पर पार्किंग की शुरू कर दी थी ना एक टाइम पे, मैं बड़ा हैरान था कि अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। मगर अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस कहाँ नहीं पहुंची, क्योंकि पुलिस पहुंच जाती तो बड़ा मसला पड़ना था। तो बंदे को हर चीज का सोच समझ के चलना चाहिए। हम डेनमार्क में हैं, हम एक अब मैं हो गए हैं करीबन 60-65 साल 70 साल यहाँ पे, तो हमें अब आयन कानून की तरह से चलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हम कहाँ जाए।
1: अदान, आप जैसे कह रहे थे कि लोगों ने गाड़ियां जो है वो गलत पार की हैं, इंतजामिया की बात मानी नहीं है, खुद कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं।
0: नहीं, मैंने ये कहा है कि देखिए आप ये देखना चाहिए कि आप एक पार्किंग है, आपको पता है कि 2 साइड पार्किंग है, गाड़ियां आगे पीछे हो रही है, आप उस पार्किंग पे खड़ा देंगे तो पीछे तो लाइन लग जानी है। और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जिस पार्किंग पे बस जा रही हो ना, बस वालों के पास एक टाइम नहीं होता, और बस वालों ने क्या कहते हैं एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि वो क्यों लेट हो रहे हैं। वो ज्यादा लेट होने लग पड़ेंगे तो वो तो टेम्पररी पुलिस को कहेंगे कम इसलिए लेट हो रहे हैं। तो फिर आप लोगों को ये सोचना चाहिए, जब आपने इंतजामिया एक दफा कह दिया, 2 दफा कह दिया, 3 दफा कह दिया, तो आप समझ जाए बात को। ये मतलब तो नहीं कि आपको 5-5 6 6 दफा बंदा के तो आपको फिर समझ आनी, फिर तो बंदे का सॉरी जो मैं ये कहने लगा कि बंदे का दिल करते कि बंदा कुछ और कर दे। मगर वही बात आती है ना कि फिर अक्ल कहाँ पे आप लोगों की। आप लोग अब क्या कहते हैं इतने साल हो गए आप लोगों को, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, अब तो थोड़ा बहुत कानूनों को समझे और आयनों कानून को देखने के क्या है और इससे सीखने की कोशिश करें।
1: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, क्या हमने 50 सालों में यही कुछ सीखा है?
2: जो कुछ सीखा है वो भी भूल गए यहाँ पे। बिल्कुल अदनान की बात सही है। कल मैंने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बताया कि कल वहां पे बसों को गुजरने की जगह नहीं थी, लोग सड़कों के दरमियान में पैदल चल रहे थे। तो इस तरीके से जो पार्किंग है, देखें आपको कम से कम ये देखना पड़ चाहिए कि इस मुल्क ने हमें फैसिलिटी दी है, हमें आजादी दी है, तो कम से कम हम यहाँ से जो गुजर रहे हैं लोग, खुदा ना खासा एम्बुलेंस गुजर रही है, कोई फल गुजर रही है, कोई चीज गुजर रही है बस वगैरह, उसके रास्ते में हम ना आए। यहाँ पे वो ये समझते हैं कि हमने जो ये लीजिंग पे गाड़ियां ली हुई है इतनी इतनी बड़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शो है, हम लोग बहुत बड़े कांगली फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि

0: बेशक मेरी बातों को लोगों को बुरा लगे, मेरे खुद वीजे पे लिखा हुआ है आप अच्छी लाल से, मैं जब यहाँ डेनमार्क में आया हूँ मजदूर की हसीियत से मुझे वीजा मिला, उसके बाद यह ज्यादा बात है पढ़ लिख के आदमी कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वीजे वीजे के ऊपर तो आपके लिखा हुआ है ना कि आप आपको आप अच्छी लाल से दिया जाता है, काम करिए इजाजत दी जाती है। तो हमें अपने आपको थोड़ा सा इस कम्युनिटी के अंदर, और मैं ये यंगस्टर्स को वाजिया ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने लिए बहुत बड़ी कुआं खंडक खोल रहे हैं और जो खुद चुकी है, और इसके अंदर आप पानी छोड़ने की बात है, आपको ये यकीन नहीं होगा ये कितनी गहरी है। यहाँ पे अदनान इस चीज पे मुझे सवाल भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, और अगर ये एग्री नहीं करता, यहाँ इन्होंने जो नए लॉ फोर्स ने 2023 और 24 में बनाए हैं वो इतने संगीन, इतने घिनौने हैं कि उसकी जद में हम कोई भी आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आप ये देखें कि ये जो अभी खियोस्को का वाकया हुआ है, ये सिर्फ फ्यून और शीलैंड पे नहीं हुआ, ये हर जगह पे हो रहा है, और इन्होंने ये काफी अरसा तक इन्होंने ये चीजें जारी रखनी है। जब इन्होंने इजाजत दी हुई है कि अगर आपके पास बाउल अकेल के अंदर आप फेल हो जाए तो वहां पे उसके अगर जगह है सोने की और वहां पे आप खुदा न खासा आग लग जाए, कोई अच्छी चीज हो जाए, तो वहां पे एग्जिट डोर यानी कि एक्स्ट्रा दरवाजा है कि आप पीछे से निकल सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके मसाइल इसलिए बड़े हैं कि जो है जो ईस्टर्न गेट में वाकया हुआ था क्रॉस के अंदर, इससे मसाइल जो है काफी सख्त हो गया, कानून सख्त हो गए हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो रात को अपने जो मिल आप जो उनके लिए पास काम कर रहे हैं तो उसको वहां पे फल कराए, उसकी इजाजत नामा ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गैर कानूनी काम करने पे अदनान तुम इस पर क्या कहते हो?
1: साहब देखिए सर, सॉरी साहब, इस पर तो भी दो राय नहीं है, किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए और गलत काम से गलत नतीजा ही होता है। और आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो जो जो तीन दो तीन सालों से कानून आ रहे हैं वो सबसे सस्ते आ रहे हैं, और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कल मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप देखें कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई ना कोई रीजन तो है ना कि इस सोसाइटी ने ये कल्चर बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं मुझे पता है लोग मेरी बात से नाराज होंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो कानून इस मुल्क में बने हुए हैं यही चीज हम चाहते हैं कि अपने मुल्कों में हम जहाँ से हम आए हैं पीछे से, क्योंकि ये इस्लामी कानून है कि सुनते तो कह रहे। जब आप लोगों को वो चीजें यहाँ पे मिल रही है तो आप वो चीजें यहाँ पे फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं जनरेशन है, जहाँ हमारा लिंक है, हमारी फैमिली है, हमारी बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी वाइफ जिन सेकंड जनरेशन में जहाँ पे मैंने शादी पास करनी की हुई है, सब नहीं की हुई है, हम वहां जब जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज वहां पे आए जो हम यहाँ पे है, क्योंकि जब हम यहाँ पे ही खुद उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम अपने मुल्क में कैसे लेके जाएंगे।
2: अदनान अभी शाह साहब आपसे भी सवाल है कि अभी जो सोशल डेमोक्रेट और पीपल्स पार्टी का आपस में, पीपल्स पार्टी डेनमार्क की पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो ज़बरदस्त टक्कर ले रहे हैं, ये खतरे से खाली नहीं है, ये एक जो है वो नील्स जेस्परसन का ख्याल है, आप क्या कहेंगे दोनों?
0: जी मैं तो ये कहूँगा कि ये एक सियासी प्रोपगंडा है, ये दोनों पार्टियों के मंशूर बिल्कुल एक हैं, मिलते जुलते हैं, और ये क्योंकि जो सोशल डेमोक्रेट है ये अपने जो लेबर लेबर लॉज हैं, जो इनके लेबर मंशूर हैं, उससे ये कम्प्लीटली कुछ पिछले 15-20 साल से ये हट के काम कर रही हैं, और ये जो इनका जो मंशूर है ये टॉप लेवल का है, सिर्फ के भाई पावर हमें चाहिए और हम पावर में रहना चाहते हैं, हमारा जो बेसिक मंशूर था वो खड्डे में जाए उसकी हमें परवाह नहीं है, जो हम लेबर पार्टी होती थी अब हम जो है वो बस वोट हासिल करने के लिए है। तो यही चीज है डन फुलके पार्टी। डन फुलके पार्टी भी तो सोशल डेमोक्रेट में से उससे इख्तलाफ करके आगे आई थी, लेकिन फिर सोशल डेमोक्रेट के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर ये लोग दूसरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो हम अपनी पार्टी को ही टॉप पे कब्जा करके तो इसको तब्दील कर ले। तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों पार्टी जो है, इनके टॉप लीडर जो है, इनमें इन इनकी राय एक है, लेकिन जो बोन है, जो नीचे जो लोग हैं, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। वो चाहते हैं कि डेनमार्क के जो उलेनिंग लॉज हैं दूसरे, उनको माइल्ड किया जाए।
2: जी अदनान, आप क्या कहते हैं?
1: सब पॉलिसी, मैं तो यही कहूंगा कि ये दोनों पार्टी की जो इसको कर देना, ऐसे लग रहा है जैसे एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही एक एक स्टेटमेंट आती है। और इस वक्त तो पता नहीं, इस वक्त तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या किए, क्योंकि
2: मतलब है कि नफरत के वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं।
1: सब देखिए, बात ये है कि इसके बैकग्राउंड का ये है कि 2015, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 2015 में जब ये हिले चौंस में खड़ी थी ना इलेक्शन, तो पेंस फॉल के पच्ची ने बहुत ज्यादा सीटें नहीं की और बने मेरे ख्याल से 33 सीटें ले गए थे। तो ये सेकंड बिगेस्ट पार्टी थी उस वक्त, और उस वक्त फिर इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बदली थी कि अब इनको कैसे ये वोट वापस लिए जाए, और उस वक्त से लेके आज तक इनकी पॉलिसी जो है ना वो सख्त सख्ती हुई है, क्योंकि 10 साल का पच्ची करीबन इनके वोट ले जाता था, उसके दौरान फिर 10 वर्ष का मुखवाड़ा भी आ गया और बोनस पच्ची भी आ गई, मगर उनकी स्ट्रेटजी यही थी। अब ये दोबारा से वो कोशिश कर रही है कि जो जिनने 2016 में ना 2016-2017 में जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर ये कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या बनता है लॉन्ग सेक्टर पे, ये तो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि अभी तो लोग वेकेशन पे है, समर फेरियो पर, के बाद ही देखा जाएगा कि क्या है। और दूसरा ये है कि ये जो जो जो जो, जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, मगर इसके अंदर एक ही चीज हुई मैं कहूंगा, जो मैंने पहले भी कही थी और जो जो, जो बात करते हैं लोग, जो हमें टारगेट करते हैं, कि हम इस बात को अपनी पार्टी में डिस्कशन कर सकते हैं, मगर इसका एक ही हाल है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको वन वॉइस बनना पड़ेगा, फिर ही इसका कोई नतीजा हो सकता है कि हम इस चीज को बदल सकें। हम इसकी पब्लिक खड़ी कर देते हैं फेस्टिवल्स में और इन जगहों पे, तो हम वैसे भी पब्लिक इकट्ठी कर सकते हैं। मसला बस ये है कि हम पब्लिक इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस हिम्मत की जरूरत होती है, पार्ट की जरूरत होती है, लोगों को इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत होती है, और बड़े सारे लोगों को क्या कहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, कल मैंने ये मेरा हाथ होता है इस चीजों में, मैं पहली दफा मेरे वन प्लान लोगों को बड़ा चले, बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं कि तुम पब्लिक वहां से इकट्ठी कर सकते हो। मैंने कहा मैं तो पब्लिक वहां से इकट्ठी कर सकता हूँ, वहां से इकट्ठी करता हूँ, वहां से इकट्ठी कर सकता हूँ, मगर मसला ये है, मेरे लिए मसाइल ये है, ये फाइट मैं कल ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फिर हर बंदे को जवाब देना है, हर बंदे को देना है। आप मेरा फेसबुक पेज देख ले, मेरे ख्याल से जितना मैंने लोगों को जवाब दे दिया है, जितने मुझे क्या कहते हैं लोगों ने गलत जवाब दे दिए, स्ट्रेस दे दिए, वॉट एवर दे दिए, सब उसका दे ले, क्योंकि मुझे कोई खतरा नहीं है, पुलिस के पास है, वो पड़े चले जाते हैं डायरेक्टली, पुलिस को हैंडल कर लेती है। मगर मसला ये है कि हम जितने देर तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, वी विल नॉट बी ऑन वन पेज, वही मसला होता है कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए कि 5 सितंबर को इतना बड़ा डेनमार्क के अंदर एक डेमोस्ट्रेशन आ रहा है सब चीजों के खिलाफ, कि डेनमार्क की डेमोक्रेसी, इस्लाम, सब ये देखे ना, कि हम समझते थे कि वो लोग, कल मुझे एक बंदा कहता है वो 1200 थे, मैंने कहा एक बंदे का पुत्र वो 1200 हो रहा 1300 हो, इंग्लैंड में वो कितने थे और आज देख इंग्लैंड में कितने हो। मैंने कहा एक चीज छोटी होती है एकदम लूज हो जाती है, उसको स्टॉप ना किया जाए तो बड़ी बड़ी बड़ी होती जाती। मैंने कहा इसलिए हमारा काम बनता है, कभी भी हमारे पास टाइम है हम बैठे और इन चीजों को देखे और एक प्लेटफॉर्म बनाए तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं।
2: शाह साहब, क्या समझते हैं अदनान जो कह रहे हैं, मुकाबले से ये कोई पॉजिटिव साइन जाएगा या कि नफरत वो ज्यादा फैलेगी?
0: देखिए जी, नफरत फैलाने में तो हम लोग कामयाब हो गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग सब हैं, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी को बताते नहीं कि तुम्हारे ये फॉल्ट है, तुमने ये गलती की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है, जो अदनान ने कहा है कि 5 सितंबर को जो होने जा रहा है, ये एक यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ हुकूमत को चलाती हैं, फॉर्म 47 हमारे लोगों के लिए समझने के लिए बात ही होगा कि 45 को 47 में तब्दील कैसे किया जाता, तो इस मुल्क के अंदर भी ऐसे होता है। और हमने देखा है और हर दफा मुशाहदा किया इस बात का कि सियासत जो है ये सिर्फ बातों से नहीं होती बल्कि पैसे से भी सपोर्ट होती है और बड़ी चीजों से सपोर्ट होती है। तो यहाँ के जो हालात हैं इस वक्त, ये जो ग्रीन लैंड का मसला है, इनको ये गलमे पड़ चुका है इस गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट उनको हटाने के लिए ये यहाँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग। एक बंदा आके इंग्लैंड से आके यहाँ पे, जिसका ईयू से भी तलक नहीं, वो यहाँ पे राशिज्म फैला रहा है। मैं सिंपल एक आपको मशवरा दूंगा कि मैं जैसे शायद लोग पसंद करें ना, लेकिन मैं एक बात करूंगा जो हकीकत है। अगर तारुल कादरी जो है वो डेनमार्क में नहीं घुस सकता, उसके ऊपर पाबंदी है कि वो यहाँ पे टेररिज्म की बात या कोई ऐसी बात करता है, करने आता है, ये इनका एलिगेशन है डेनमार्क गवर्नमेंट का, तो एज ए सियासी तजिया रिगार्ड मैं भी ये कहूंगा कि इन लोगों पे भी बैन होना चाहिए कि आप हमारा एक फ्रेंडली मुल्क है, हम अभी डेनमार्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क साबित किया गया है, तो ये कैसा खुशहाल मुल्क है कि जिसकी जो सबसे बड़ी अकलियत है वही दबाव में है, वही प्रेशर में है, उसी को गालियां पड़ रही हैं। तो क्या इसकी वजूहत क्या है कि एक हम लोग गबीयत बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरा हमारे में बहुत ज्यादा चौधराहट है, हम बहुत बड़े राशिस्ट खुद लोग हैं। मैंने ये देखा है कि अब ये हमारे जो लोग इलेक्टेड हो चुके हैं, इवन हमारे इधर अपना एल्बर्टसन के अंदर आप उनको सलाम करेंगे तो सलाम का जवाब मिलेगा, वो शक्ल देकर दूसरे पल तक मुंह कर लेते हैं, और जब नहीं होते तो फिर वो आप उनके अंकल भी होते हैं, आप उनके सब कुछ होते हैं। तो ये जो रेसिज्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को उस वक्त पता लगेगा कि जो मैंने लोगों से वोट लिए, उनकी हमायत हासिल की, उसके बाद मैंने क्या किया। तो इसका हिसाब जो है ये हुकुल अलबाद में आता है, और हुकुल अलबाद में अल्लाह ताला ने बंदों को बख्शना नहीं, बफा मैं क्यों ना हूं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि इन लोगों को डेनमार्क में ये पता लग चुका है कि यहाँ की हर कल्चर सोसाइटी, यहाँ की हर मस्जिद, यहाँ की हर तंजीम जो है वो एक दूसरे से अलहदा है, और ये कभी भी इस्लाम के नाम पे इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा इनको जिस तरफ दिल चाहे हांक लो, जिस तरफ दिल चाहे इनको ठुडे मार लो। लेकिन एक चीज राजा साहब याद रखिएगा कि जो हमारे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो हमारे बच्चे टॉप लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कभी भी खतरा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके लिए इनको रखना जो है ये इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनको अगले 10-15-20 साल में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो हम आम लोग हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, छोटी छोटी कियोस्क चलाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, हमें अगर वो गलती पाई जाती है तो ये हमें इतना तंग करेंगे कि हम यहाँ से चले जाएं। आपने देखा होगा, अदनान ने भी देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक डैनिश जो है वो फल्के पेंशन पे गया, तो उसने कहा कि मुझे फल्के पेंशन में एक टैक्स कार्ड को क्या मुझे 6,000-6,500 मुझे मिल रहा है, तो मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तो मैंने तो इतनी उम्र काम किया और मैं कभी भी काम के बगैर। जब डेनिश ये कह रहा है तो क्या हमारे किसी सियासतदान ने ये सोचा है, या कम्यून लेवल में जाके, या किसी गैदरिंग में ये कहा हो? पावरफुल आदमी उस वक्त होता है जिसके पीछे 100-200 बंदा होता है, वो इस चीज से वो पावरफुल बनता है, और फिर वो बंदों के सामने खड़ा होकर कहता है सियासतदान को कि देखो ये मेरे बैक है, और तुम जो हम बात कर रहे हैं इसमें वजन होना चाहिए, फिर आपको वोट मिलते हैं, फिर आप उनको अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उनसे रास्ता खत्म कर देते हैं, तो जो आपको लेके आया या जिस कमेटी में आप बैठे हैं उनको पता लग जाता है कि अब ये जो है ये पिंजरे में बंद हो गया, इसके पीछे जो बाउलेंस थी वो चली गई है, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपको अब सियासत में माइनस होना शुरू हो
2: जाता है। बात हो रही है आगे, अदनान ने बड़ी अच्छी बात की, बात हम कानून कायदे के कर रहे हैं, फलां ये कर रहा है फलां ये कर रहा है, अब हम अपनी गाड़ी पार्क सही नहीं कर सकते। मैंगो फेस्टिवल था जो अदनान बता रहे हैं, अदनान से भी जो है वो कमेटी वाले या दूसरे लोग जो है गिला कर रहे हैं, गाड़ियां हम गलत पार्क करते हैं। शाह साहब, क्या हम अपनी गाड़ियां दिखाने जाते हैं, अपना लिबास दिखाना चाहते हैं, या हमें एडवर्टाइज तो मैंगो फेस्टिवल की, मैंगो की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी या टिक टाक की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी? ये तो पैसा कमाते हैं टिक टाक वाले।
0: मेरा ख्याल में कि इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, इनको ये चाहिए था कि बैंक में अकाउंट बंद ना करते, लोगों को बिजनेस के लिए खोलने की इजाजत देते, लेकिन ये जो लीजिंग पे छोटे छोटे वर्कर्स को, छोटे छोटे बिजनेसमैनों को काम करने के लिए इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां इन्होंने लीज कर दी है, उनके ऊपर उनसे कहना चाहिए था कि हाँ आप अपनी स्टैंड इनकम, आप अपने पूरे घर की इनकम, आपकी इनकम दिखाएं, आपके पास क्या बचता है। जैसे वो हम पेंशनरों से पूछते हैं कि भाई आपने अगर ये दवाई लेनी है तो इसकी फैसिलिटीज लेनी है तो आप पूरा खर्चा बताएं महीने का। फिर यहाँ भी ये देखते हैं कि ये छोटी गाड़ी में बैठने को पसंद करते। मैं इनके मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसलिए इसका मुखालिफ हूँ कि अगर आपने बड़ी गाड़ी ले ली है तो उसको पार्क करना, अगर आपको नहीं मिला तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर आप पार्क कर ले। आप बस में आ रहे हैं, आपकी इज्जत कम नहीं होगी? जो आपका उसी गांव का रहने वाला बंदा वो उतनी बातें आपके खिलाफ करेगा, कहेगा हमें इसको पुराने, मुझे नहीं बख्शते, मैं गुजरात शहर का किसी वक्त खाने, मुझे नहीं लोग बख्शते, यहाँ पे नहीं बख्शते, गालियां देने से बाज नहीं आते। तो ये इन बड़ी गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी गाड़ियां ले, अपनी इज्जत बनाए, लोग आपको इज्जत दे। माशाल्लाह आप इस मुल्क में बड़े हुए हैं, हम लोग तो फिर पाकिस्तान से आए थे, तो आप इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमारी ये दुआएं हैं कि आप सबसे पहले। एक दूसरी बात मैं राजा साहब यहाँ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इदनान भी इस पे करे, हमारी कम्युनिटी को खूसी तौर पर मुसलमान कम्युनिटी को सबसे बड़ी नुकसान इस बात पे हुआ है कि जो हमारी यहाँ पे डिवोर्स हो रही है इस वक्त, सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट जो है, मैं हैरान हो गया हूँ अगले दिन अखबार में पढ़ के कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा शरह जो है वो डिवोर्स की है, और बाद लोगों ने दो दो तीन तीन दफा डिवोर्स लिया यहाँ इस मुल्क के अंदर, और ये बहुत ही इंतहाई खतरनाक है, और इसके ऊपर भी कोई कानून बना सकते हैं। इदनान इसके ऊपर बात करे, ये बताए कि इसके नॉलेज में क्या है।
2: शाह साहब, ये बातें तो कानून की तो कानून दान ही कर सकते हैं। तो अदनान, आपने ये सारी चीज़ों को देखा कि हम सियासी जमातों में इकट्ठे नहीं होते, तकसीम हो जाते हैं, जहाँ जिन जिन ममालक से आए उनमें तकसीम हो जाते हैं। सियासतदान तो हर वक्त फिट रहता है, जो वोट देने वाले होते हैं, जो तामन करने वाले होते हैं, एक बंदा राइट पे हो जाता है, एक लेफ्ट पे हो जाता है। मैं अदनान को पसंद नहीं करता, मैं शाह साहब को पसंद करता हूँ, क्योंकि अदनान से मेरी मुखालफत है, मैं शाह साहब को वोट दूंगा। जो शाह साहब को पसंद नहीं करता वो कहता है मैं शाह साहब को नहीं पसंद करता, मैं अदनान को वोट दूंगा। जब हम नज़रियाती वोट ही नहीं देते, तकसीम होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, सिर्फ जो है हमारी कौम जो है वो डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग की हद तक महदूद है। जी अदनान,
1: देखिये राजा साहब, इंसान को उसकी काम से वोट देना चाहिए और उसकी बैकग्राउंड से देना चाहिए, नाम से किसी को वोट नहीं देना चाहिए, एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इंसान को ये देखना चाहिए कि इंसान कौन सा काम कर रहा है अच्छा और कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहा। और शाह साहब की बात सही है कि जैसे सब प्रॉब्लम काफी हैं और इस पे गौर करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला इस पे काम भी किया जाएगा कि क्या वजह है, और ये इंशाल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई राय भी आएगी। मगर अभी मैंने इस पे गौर इतना नहीं दिया, मगर इंशाल्लाह ताला इस पे जब मैं गौर दूंगा और देखूंगा इस चीज को, तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में कोई ना कोई कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से कि इस चीज का बेहतरी आए।
2: तो अदनान, बड़ी खुशी की बात है जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं या जिन जिन कमूनों में बैठे हुए हैं उनको बड़ी अच्छी पोस्टें भी मिल गई हैं, वो सारा कुछ मिल गया है, बच्चों को भी मिल गया है, खुशखबरी की बात है। मैं अब खुद तो नहीं जाना चाहता, वो खुद ही बंदों को अपनी खुशखबरी जो है खुद सुनानी चाहिए। तो शाह साहब, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत सारी खुशखबरियाँ भी आ रही हैं, जिस तरह आप दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं, वो मैं चाहता हूँ जिनको खुशखबरी मिली है वही ब्रेकिंग न्यूज़ दें।
0: ये राजा साहब बात ये है कि हमने तो ये देखना है कि ब्रेकिंग न्यूज वो होती है कि इन्होंने क्या किया। देखिए आप सियासत में आए, आप हारे आप जीते, ये मैदान में होता है। लेकिन अगर आप हार कर भी अपनी जीत को बरकरार रखते हैं और आप सियासत में एक्टिव होते हैं और सियासतदान साबित करते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे रेडियो पे मीडिया पे हर सूरत आना है, मैंने अपने ख्याल जो है अगले चार साल के लिए जो मैंने इलेक्शन लड़ना है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, तो लोगों में वो ज्यादा पावरफुल और मजबूत और कादावर बनकर आएंगे। लेकिन अगर आप सडनली इलेक्शन से चार दिन पहले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अपने खानदान की पावर से मैं फलानी बिलादरी से हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ, और फिर लोगों के तले करके मिलते करके आप वोट लेते हैं, आप आगे जाते हैं, तो ये नुकसानदेह है। फिर आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं जी कि हमें अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए हमें दूसरा काम। देखिए आप इलेक्ट हो ही ना, आपको सियासत का शौक है, आप लिखे, आप सियासत में आए, जरूर आए, आप जाके फलके सिंह के उधर में बैठ जाए, आप कम्यूनों के अंदर जाके वहां पीछे बैठ के उनकी कमेटियों का सुने के इजलास क्या करते हैं, आप अपनी सियासत में वहां बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मेडल से जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में भी सुरखू हो जाए कि हमें हमसे बड़ा सियासतदान डेनमार्क में कोनी, और हालांकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो डेनिश सियासतदानों से उनमें जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ के डेनिश जो है उनके अंदर बेशक वो कितने बड़े राशिस्ट हो उनके अंदर फिर भी नेशनलिज्म है, वो ये नहीं कहते कि जाओ तुम पीछा गलत बोल रहा है रेडियो पे इसको पकड़ के मुल्क से आउट कर दो, नहीं वो कहते हैं कि ठीक है हाँ जब ये स्टेट के खिलाफ जाएगा तो पीछा स्टेट के खिलाफ बात करेगा तो फिर हम इसको कानून की जात में लाएंगे। लेकिन अगर ये सियासत और सियासत को सियासी चीज करके तजिया कर रहा है तो वो कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, और हमने इस रेडियो पे आपके प्लेटफॉर्म पे एक दफा नहीं लाखों बार हमने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि हुकूमत जो है ये सियासतदानों की होती है, ये कोई अपना स्टेट नहीं होती, तो हम कभी भी डेनमार्क की स्टेट को अल्लाह माफ करे हम कभी भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये अब हमारा वतन है, ये हमारे बच्चों का वतन है और हमने यहाँ रहना है और इसी वजह से हमारी इज्जत है। अगर हम डेनमार्क में ना रहते होते तो पाकिस्तान में
2: शाह साहब आपसे जिमनन सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग डेनिश पासपोर्ट रखते हैं और पाकिस्तान की स्टेट को तनकीद का निशाना बनाते हैं,
0: कि वो जो स्टेट को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो ये समझ लेंगे कल को जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो स्टेट जो एयरपोर्ट पर उनका असर करेगी वो कहीं भी नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में कि मेरे पिछले हफ्ते पाकिस्तान में एक पुलिस के महकमे से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि आप ये बड़ी चीज याद रखें कि ये जो आप व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पे आप मैसेजेस खोलते हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं तो वो उसमें ये गिना जाएगा कि आप उनके हमदर्द हैं, और आप उसको फिर दूसरे बंदे को बेच रहे हैं कि लो तुम भी पढ़ लो ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्रोपेगंडा होता है, तो इसमें आप लोग शामिल हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप ये मैसेज अपने लोगों को दें कि खुदा रहा ऐसी ऐसी जो मेल आपको आती है उसको डिलीट कर दें, उसको खोले ही ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसको फौरन डिलीट कर दें, और बल्कि उस बंदे को अपने ग्रुप में शामिल ही ना होने दें ताकि वो अच्छी हरकत है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा अफगानी और हिंदुस्तानी जो है भारती वो इस वक्त हमारे नंबर यूज करके हमारे नाम यूज करके तो वो जो है वो हमारे ग्रुपों में शामिल हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो आगे आ रही है। राजस्थान
2: अदनान क्लोज करते हैं, अदनान को हल बताएं, ये जो सियासत है ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरी तरीके से ही राइट्स मिलेंगे, जब तक इन पार्टियों के अंदर नहीं जाएंगे, इनके मेंबर्स नहीं बनेंगे, कम्यून में अपनी तादाद को बढ़ाएंगे नहीं, पार्टियों में तादाद बढ़ाएंगे नहीं, तो कोई भी कानून नाम तब्दील नहीं कर, यही बात है पार्लियामेंट में, यही पार्लियामेंट में जाकर काम करना होता है। मेरी अच्छी बातें करने से, शाह साहब की अच्छी बातें करने से, आपकी अच्छी बातें करने से तो बात लोग सुन लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लोगों को जब लोग कहते हैं शाह साहब, उनको यहाँ की डनमार की सियासत करनी चाहिए, इन पार्टियों में जाना चाहिए, अगर इन पार्टियों में जाते नहीं है, बंद कमरों में सियासत की जो है बुचाड़ करते हैं शाह साहब, फिर तब्दीली नहीं आएगी।
1: यार साहब, बंदे को पार्टियों में जाना चाहिए और किसी स्टेट के खिलाफ भी बोलना चाहिए और स्टेट को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए बंदों की राय, और मेरी यही राय है कि हम इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में और लोग ज्वाइन करें पार्टियों को, और मेरे लिए सबके लिए दुआ है कि ये लोग का अपना जो लोगों का फैसला होगा वो लोगों का होगा, मेरी तो यही है के बंदे को पार्टी में रहना चाहिए।
2: शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे और आप अदनान का शुक्रिया भी अदा करें, प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
0: ये बिल्कुल, मैं आपको बताता, जो स्टेट होती है, फौज का अदारा होती है, दफाई अदारे होते हैं, फाइनेंस के अदारे होते हैं, पुलिस के अदारे होते हैं, जो अमन अमान के अदारे होते हैं, जो परमानेंट काम करते हैं स्टेट के अंदर, वो होती है स्टेट, और इस पार्लियामेंट भी आपकी जो है वो स्टेट है, लेकिन जो सियासत है वो हुकूमत होती है। आप सियासतदान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मुल्क के इन अदारों के खिलाफ बात करेंगे तो वो स्टेट के खिलाफ बात जाती है, और उसको ये बहुत खतरनाक बात है, इसकी सजा जो है पाकिस्तान में और बहुत दूसरे ममालिक में, इवन डेनमार्क में डेथ पेनल्टी है कि आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, तो इससे लोगों को परहेज करना चाहिए। ये ना समझना चाहिए कि सारी उम्र हमने यहाँ कर रहना, किसी ना किसी वजह से हमने वापस अपने अपने मुल्कों में जाना है। तो इदनान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छी मालूमात दी, और जैसे तुमने वादा किया कि अगले किसी भी प्रोग्राम में तुम फुल इंफॉर्मेशन लेके आओगे कि हमारे जो यहाँ डिवोर्स रेट है इसकी वजूहत क्या है और इनके पीछे जो अवामल है वो क्या क्या है, तो इंशाल्लाह ताला इस पे मैं भी अगर साथ हुआ तो मदद करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लिसनर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें बर्दाश्त किया, अब गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा है तो कोई हम भी एंजॉय कर लें। ठीक है राजा साहब, अल्लाह हाफिज।
3: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: गिरदुनवा से हैं तो अपना मेन कराची से हैं तो कराची शहर, ये ना हो कि ये बच्चे जाके सिर्फ वही इमेज देख के आए जो आपके गांव का है, और उसका नुकसान ये है कि वो आके एक बेहतर इमेज नहीं लेके आते, और वो फिर बच्चे जब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं तो वो मोरक्को, तुनिसिया, तुर्की भागते हैं, वो अपने मुल्क जाने को प्रेफर नहीं करते। तो आप अपने मुल्क का बेहतर जो है वो तशख्स पेश करें ताकि बच्चे पुट ऑफ ना हो।
1: मलिक साहब, बाज लोग आपको मुकम्मल तौर पर लाहौर देखना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है?
0: मुकम्मल तौर पर लाहौर ही हूँ, ये डिजिटल का जमाना है आजकल, फोन अभी हम, मैं अगर आप कहें कि जी डेनमार्क आगे ही प्रोग्राम करेंगे तो करेंगे, तो शायद हम एक भी ना कर पाते। तो मैं तो तकरीबन एवरी अदर 6 मंथ्स आपके साथ प्रोग्राम में पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ। तो ये डिजिटल का जमाना है, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों को लेना चाहते हैं जॉब के लिए तो आना जाना रहेगा। मेरी फैमिली यहाँ है तो मुझे आना पड़ता है, मेरा एक चलता चलाता दफ्तर है 20 साल से, मेरे क्लाइंट्स हैं 5,000 से ज्यादा, तो उनको सर्विस देनी पड़ती है। और ये एक वॉलंटरी जॉब है जो हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चेयरमैन का वहां होना जरूरी है, कमिश्नर का वहां होना 24 घंटे जरूरी है, वाइस चेयरमैन तो एक अलामती ऑनरेरी पोजीशन है, ये तनख्वाहदार पोजीशन नहीं है। तो हम अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना वॉलंटरीली कर सकते हैं, और उस सिलसिले में फिर रोजगार भी चलता रहता है जिससे हम जो खर्चा होता है उसको सर्विस करते हैं अपने दफ्तर से। तो एक अच्छा निजाम चल रहा है, जहां जरूरत होगी, आजकल तो PIA की फ्लाइट चल गई है मैनचेस्टर से लाहौर, मैडम को जब जरूरत होती है तो हम जो है विद इन 10-15 आवर्स लाहौर मौजूद होते हैं, और मैं खुली कचहरी करता हूँ हर महीने के आखिर पे। तो ये साइलिन के लिए एक मौका होता है कि जिनके मामला रुके हुए हैं तो वो उस खुली कचहरी में आते हैं और बताते हैं, और वहां पे मौका पर अफसरान मौजूद होते हैं और हम मौका पर अहकाम लेते हैं ताकि उनकी दादरसी हो सके। वैसे भी जब मैं वहां जाता हूँ वहां मेला लगा रहता है, और यहाँ दफ्तर में भी 4 से 6, 1 से 2, सैटरडे का पूरा दिन, आज देखिए पूरा दिन आपके साथ लग जाएगा, तो सैटरडे का पूरा दिन काम करता हूँ। तो ओवरसीज के लोग, उनके साथ एक्सेस है, और जो भी उनके जुमला मामला होते हैं उनकी हमारे साथ डिजिटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ 24 घंटे रहा रहता है, और कुल वक्ती कमिश्नर जो है वो OPC में मौजूद है, जो 21 ग्रेड का मुलाजम है, तो वो भी आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं।
1: मलिक साहब, बड़ा अच्छा किया आपने वजाहत कर दी कि लोग तो समझते थे जिस तरह ये अमेरिका वार को किस तरह देखते हैं, इसी तरह शायद लगता है ऐसे था कि आपको भी कोई करोड़ों के हिसाब से महीने के पैसे मिलते हैं।
0: नहीं, ये वॉलंटरी जॉब है, इसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, बल्कि इसके कोई पर्क्स प्रिविलेजेस भी नहीं है, और वो तो मरियम साहबा की मेहरबानी है कि उन्होंने वजीर का दर्जा दिया हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लैग कार दी है, तो ड्राइवर है साथ, लेकिन उसमें कोई पैकेज नहीं है जो, यानी तनख्वाह तो खुद ही होती वाइस चेयरमैन।
1: मलिक साहब, चलें इस पर बात आगे बढ़ते हैं, सवाल मेरे पास काफ़ी हैं, जल्दी से करना चाह रहा हूँ। सितंबर में अक़वामे मुत्तहिदा का इजलास इवेंट फुल हो सकता है?
0: देखें, अकवामे आलम को कोशिश करनी चाहिए कि अकवामे, ये जो सितंबर का इजलास है उससे पहले पहले ईरान USA वॉर को कंक्लूड करें और अग्रीमेंट को हतमी शक्ल दें। सितंबर के UN के इजलास के दौरान में अगर ये सुलह का कोई अच्छा देरपा हल निकाल लें तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा UN के प्लेटफॉर्म से अमन का मैसेज जाएगा। अदरवाइज जैसे जैसे UN अपनी अफादियत खो रहा है, पीस भी कहीं धुंधला जाएगा, और ये मुल्क के लिए और रीजन के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरनाक होगा। जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस तेजी से बढ़ रही हैं, आम आदमी की बसात से रोजमर्रा की अशिया जो हैं वो निकलती जा रही हैं, और ये बहुत खतरनाक होगा अगर ये रुझान चलता रहा। आप जंग के हालात में ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, और अब हम तकरीबन तकरीबन ये पूरा साल जंग में गुजार रहे हैं, तो आप सोचें कि माइनर वीकर इकोनॉमीज के ऊपर इसका क्या असर हो रहा होगा। यानी पेट्रोल जो है बसात से बाहर हो गया, और लोग घरों तक मैसूर हो गए क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते। अब तो मोटर बाइक वाले चीखना शुरू हो गए कि पेट्रोल अफोर्डेबल नहीं है, तो ये आगे चल के हर गरीब मुल्क के ऊपर इसका बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा, कर्जे का बोझ ज्यादा पड़ता जाएगा, और ये बहुत सारे मिजमरात हैं इसके, बहुत सारे इसके असरात होंगे, नेगेटिव असरात इकोनॉमी के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अकवामे मुत्तहदा का इजलास अमन के हसूल के लिए दूरस्थ नतज का हमल हो सकता है अगर बड़े ममालिक उसमें अपना किरदार अदा करें।
1: मलिक साहब बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया। मलिक साहब इस बड़े तंदूर पर तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो इन सारे हालात में मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, 3 बार वजीर आजम रह चुके, वो क्या सोच रहे हैं?
0: देखिए उनकी बेटी जो है वो उनकी जेरे निगरानी, उनके रुफका की जेरे निगरानी वजारते आला के ऊपर वो एक बड़ा एक्सपीरियंस ले रही हैं। उधर जरदारी साहब जो हैं वो अपने बच्चे को, मेरा ख्याल है कि वो ही इज ग्रूम्ड टू बी अ लीडर ऑफ हिज पार्टी, पीपल्स पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगली जनरेशन को ये जो तजर्बे का मौका मिला है ये मुल्क के लिए और सियासत के लिए बेहतर है कि कोई ना कोई आगे चीज जो है वो है। उधर शहबाज साहब के बच्चे भी, दो सलमान और हमजा, उनकी मावनत करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है कि ये नौजवान नस्ल जो है वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सीख रही है। मियाँ साहब मेरे ख्याल यही सोच रहे होंगे कि एक तरफ उनका भाई वजीर आजम है, एक तरफ उनकी बेटी वजीर आला है, और सबसे बड़ी अपोजिशन की जो स्टेक होल्डर पार्टी है वो उनकी अलाई है, तो वो सोच रहे होंगे कि किस तरह ये 4-5 साल गुजरे ताकि ये लोग जो हैं इस जो काम है इसको लोगों के सामने पेश कर सकें और आइंदा के लिए अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी पॉलिसी बना सकें। अभी क्योंकि इस टेन्योर में तो उनका आगे बढ़ के उनका कोई रोल नहीं बना, लेकिन अगले सेटअप में उनका बहुत बड़ा रोल होगा कि हाउ ही पिच हिज इलेक्शन कैंपेन, हाउ ही ट्रांसलेट जो काम उनकी बेटी ने किया है, भाई ने किया है, उसको लोगों तक पहुंचाएं, और हाउ ही टैकल द ऑपोजिशन, क्योंकि जाहिर है अगर ऑपोजिशन इज लेड बाय जो करंट ऑपोजिशन लीडर हैं तो वो भी एक बड़ा एक देखना पड़ेगा कि अगर आप एकदम उनको फ्री हैंड मिलता है और अवाम की जो फीलिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए, तो यूथ को गैल्वनाइज करना, हुकूमत में रह के जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो एकदम लोगों के साथ राबता साजी एक बड़ा जुएशीर लाने के मुतरादिफ काम है। तो ये हुकूमत से 5 साल निकल के जाके पब्लिक में जाना, ये बड़ा लीडर चाहिए, और नवाज शरीफ साहब का होना मुस्लिम लीग नून के लिए बायस बरकत है कि वो एक लीडर मौजूद होगा जो अवाम में जाएगा और अवाम को अपनी तरफ रागब करेगा, इसी तरह बाकी लीडर भी करेंगे। तो यही एक टेस्ट होगा कि कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं इन 5 सालों में किए काम को अपनी कामयाबियां गंवाने के लिए कि लोग उसके ऊपर वोट भी दें।
1: मलिक साहब आपने बहुत सारी बातें की और खुलकर की, तो हमारे मामला जो फॉरन ऑफिस के या फॉरन जो दूसरे मुल्कों के साथ चलते रहते हैं, इसहाक डार साहब का फॉरन जो फॉरन अफेयर्स है, फॉरन चूंकि वो फॉरन मिनिस्टर है, और उनकी कारकर्दगी को या उनका काम कैसे चल रहा है?
0: मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने इंडिया की जंग भी जीती है और सालसी के पीछे फॉरन ऑफिस का बड़ा किरदार होता है। ये जो आपके चीफ जा रहे हैं पूरी दुनिया में, आपके वजीर आजम जा रहे हैं अरब ममालिक में, तुर्की में, पूरी दुनिया में, तो फॉरेन ऑफिस तो पूछे एक बैकबोन होती है जो ये सारा मनूवरिंग जो है उसको इफेक्ट करती है। इसहाक डार साहब फाइनेंस के आदमी हैं, कम गो हैं, काम करने वाले 24 घंटे से 22 घंटे काम करने वाले आदमी हैं, उनको फॉरेन ऑफिस दी, उन्होंने चुपके चुपके चुप चुपीते जो है आपको काम करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। एक एक दिन में जंग के ऊपर इतने फॉरेन मिनिस्टर के साथ राबता करना, फिर सालसी के दौरान सालसी की नगोशिएशन आपके मुल्क में हुई हैं, ये एक अनहोना वाकया है कि एक गरीब इकोनॉमिकली इन अ बैड शेप मुल्क एक वर्ल्ड की सुपर पावर को मुसलमान मुल्क की पावर के साथ जो है सालसी कर रहा है, और वो मान रहे हैं कि ये हमारा सालस है, फैसिलिटेटर नहीं कहते, वो कहते सालस है। सो आप एक मसदका सालस के तौर पे काम कर रहे हैं, और डिस्पाइट द फैक्ट के हम IMF में बालों बालों उलझे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब ने परफॉर्म किया है, और फाइनेंस के ऊपर भी उनकी नजर होती है बिकॉज ऑफ बीइंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो एक अच्छा एक पैर डुओ चला है और पाकिस्तान की खिदमत हुई है, और ये हिस्ट्री जज करेगी कि कैसा रहा, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करते हैं। अल्लाह लोक आदमी है, गॉड फियरिंग आदमी है, मुझे उनके साथ 5 साल हो गए हैं, डायरेक्ट उनके कमांड में काम किया है, तो उनके साथ काम करने का अपना एक तरीका कार है और अपनी डिसिप्लिन है, और वो डारसा कॉमा और पेश और फुल स्टॉप भी ना छोड़ने वाले आदमी है, और वो माइन्यूटली पेपर्स को पढ़ते हैं और एक एक चीज को वो बड़ी लिहाज से देखते हैं। तो उनके साथ काम करना एक बहुत अच्छा तजर्बा था, मुझे बहुत सीखने को मिला है और उम्मीद है कि वो आगे भी एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे जो उसी तरह उनकी तरह काम करेगी और उसी तरह पार्टी को और मुल्क को और अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेगी।
1: मलिक साहब, इसहाक डार साहब दरवेश इंसान हैं, बड़े मेहनती हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस मैन हैं, लेकिन मीडिया भी बड़ा बेलगाम है आजकल, मीडिया भी थोड़ा सा, मीडिया की जद में भी थोड़े से आए हुए हैं।
0: देखिए वो उनकी फैमिली में किसी बच्चे का इश्यू हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करते हुए जो है मामला जो है उसके ऊपर केस रजिस्टर भी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये काम तो अदालतों का है कि शेफ को ग्रेन से अलहदा करे, ये पॉलिटिकल काम तो है नहीं, अदालत ने फैसला करना है, ये पार्लियामान में भी नहीं होना और मीडिया पे भी नहीं होना। तो मेरे ख्याल में लेट्स नॉट हैव अ मीडिया ट्रायल, मेरी यही गुजारिश होगी कि लेट द कोर्ट डू देयर जॉब। इस मुल्क में तो वैसे जो है वो क्या नाम था वो रेमंड डेविस बंदे मार के चला गया है, तो ये पाकिस्तान का, और अभी सीसीडी के ऊपर भी बातें होती हैं, तो ये हर वक्त में कुछ ना कुछ होता रहता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत करें जिसमें हाथ ना मरोड़े जा सकें और आम आदमी को भी उसी तरह इंसाफ मिले जिस तरह खास आदमी को मिलता है। तो इसी सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है, पुलिस अपना मुकदमा दायर करे, चलान जमा करवाए, अदालत इसके ऊपर अपना फैसला दे, बेस्ट यही है, और टाइम स्पैन में दे, 5-6 महीने में केस को फारिग करे, पता करे जो भी करना है। उससे ये फायदा होगा कि लोगों का इंसाफ के जो तरीकाकार है या निज़ाम है उसके ऊपर एतमाद बहाल होगा, और मेरे ख्याल में किसी के घर में भी कोई भी शख्स जुर्म कर सकता है, सजा उस जुर्मवार को मिलनी चाहिए जिसने जुर्म किया है, लेकिन उनके बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, माओं को पोलिटिसाइज या प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं बनाना चाहिए। और ये तो मसदका एक कोर्ट है कि यू आर इनसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोशिश सिर्फ ये करें कि कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करे, समरी जजमेंट ना हो, समरी ट्रायल ना हो, लोग गुत्थम गुत्था ना हो, लोग कानून को हाथ में ना लें और अदालत ही जो है ऐसा फैसला करे जिसके ऊपर सजा या जजा हो।
1: मलिक साहब, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, एक दो सवाल आपसे करने हैं। कश्मीर के इलेक्शन, एहतजाजी सियासत और अपोजिशन का ये जो तड़का बीच में लगता है, आप इन चीजों को किस तरह देखते हैं?
0: देखिए तीन चीजें हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि भारत जंग हारने के बाद हर वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे आपकी रियासत कमजोर हो और आपका बयानिया जो है टूटे, तो उसमें चाहे कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, कराची हो, और टीटीपी हो, हमारे जो केपीके के जो बॉर्डर है उसके ऊपर स्किरमिशेज हो या इंक्रीजिंग इंसर्जेंसी और तालिबानाइजेशन हो। अब दूसरा जो है वो ये छोड़ेगा नहीं, चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे आप केपीपी में कराएं, चाहे आप बलूचिस्तान में कराएं, इस एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फॉरन जो ताकतें हैं वो वहां अपना रोल प्ले करेंगी। अब देखना आपने ये है कि बरतानिया में 12-13 लाख कश्मीरी बसते हैं, उनके पाकिस्तान के साथ गहरे रवाबत हैं, यहां कश्मीरी निजाद काउंसलर्स, मेयर, मेंबराने पार्लियामान है, वो एक गैल्वनाइज करते हैं, उनके पीछे पूरी पूरी एक फौज है जिन जो वोट देती है उनको, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूरियां हैं। तो देखना ये चाहिए कि बरतानिया में बैठ के कश्मीर के इलेक्शन मैनेज ना किए जाए, आपने वोट डालनी है, बिस्मिल्लाह कश्मीर में उतरें, कश्मीर जाएं, वोट डालें, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, बसें दें, आप ट्रक दें, आप लोगों के स्टॉल लगाएं, आप अपने स्टेशन बनाएं और मदद करें। लेकिन खुदारा यहां बैठ के, बरतानिया में बैठ के कश्मीर के इलेक्शन का फैसला ना करें, कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी वोट डालेंगे, कोई और वोट नहीं डाल सकता, ना पंजाबी, ना सिंधी, ना बलोची, ना पठान, आपने वोट डालने, बिस्मिल्लाह वोट डालें, अपने हुक्मरान खुद सेलेक्ट करें, जो हुक्मरान बने वो फैसला भी करें कश्मीर एक्शन कमेटी का क्या करना है, अगर कश्मीर एक्शन कमेटी वाले लोग बना लेते हैं हुकूमत, वो फैसला करें कि क्या मराहत देनी क्या नहीं देनी, और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मकालमेल में रहे, सियासी चीज को सियासी रहने दें। यहां इसको खिदो बना लिया है, एक तो पोलराइजेशन, आप दरवाजे तोड़ रहे हैं। एहतजाज करें, ये बरतानिया है, ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे एहतजाज को देखा जाता है, यहाँ गाजा पे एहतजाज होता है, यहाँ पे इमिग्रेंट के खिलाफ ईडीएल एहतजाज करती है, लेकिन ईडीएल को हुकूमत नहीं मिल जाती। ईडीएल के एहतजाज में लाखों लोग आते हैं, लेकिन उनको हुकूमत नहीं बनाने दे दी जाती कि वो उठा के इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दे। आप एक पॉपुलिस मूवमेंट का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, पॉपुलिस मूवमेंट ट्रांसलेट हो हुकूमत में ये लाजमी नहीं है। यहाँ आबादी ज्यादा है तो बातचीत भी ज्यादा होगी, आवाज भी ज्यादा निकलेगी, बिल्कुल निकालें, लेकिन यहां बैठ के कश्मीर के वजीर आजम का फैसला ना करें, वो वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को करने दें, मीरपुर मुजफ्फराबाद कोटली इस जगह के लोगों को करने दें वहां की सीटों का फैसला। किसी ने बहुत ज्यादा सियासत है शौक तो जरूर जाके सपोर्ट करें, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें, अपनी पार्टी के नहीं लड़ने दिया जाता तो आजाद खड़े हो जाएं, आजाद लड़े, लेकिन वहां के लोगों को फैसला करने दें, उनके वोटों से एमएलए बनने हैं, उनके एमएलए के वोटों से आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना है। अब एक जगह पे आबादी ज्यादा है और वहां पे आपकी से ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तरीका नहीं है कि आप गालम गलोच में हर उस सतह को पार कर जाएं जिससे आपका अकाउंट तो शायद मोनेटाइज हो जाए, पैसे ज्यादा आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने लगा। अपने मेंबरान पार्लियामेंट, अपने काउंसलर्स, अपने मेयर को एक अच्छा शुस्ता फेयर फ्री इलेक्शन करवाने या होने देने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, रादर देन कि एंटी पाकिस्तान जाके जी दरवाजे तोड़ दे हाई कमीशन के, या जी बंदे खड़े करके तो जी झंडे लहरा रहे हैं जी इंडिया के, या गालियां निकाल रहे हैं, वो कोई तरीका नहीं है। आपकी एम्बेसियां हैं, आपने वहां से कार्ड लेना है, नायको कार्ड लेना है, पासपोर्ट लेना है, आपने इनसे सहूलतें लेनी है कि आप अपनी एयरलाइन डायरेक्ट वहां चला सके मुजफ्फराबाद और बीरपुर, आपने इनसे काम लेना है तो काम चलना है। तो एक ऐसा ट्रीट करे कि जिस तरह एक मुहज्जब मुआशरा ट्रीट करता है, इसको इतना इज्जत बिस्ती का मसला ना बना ले कि लोग बाहर निकलना उनके लिए दुश्वार हो जाए, और आप बरतानिया में ऐसे हालात पैदा कर लें कि लोग जो हैं वो परेशान हो जाएं कि ये बरतानिया है या आपने ये जम्मू ही बना लिया इसको, तो देखना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन मैं हमेशा ही ह्यूमन राइट वकील होने के नाते जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दाई रहा हूँ, अब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि बातचीत से मामला हल किए जाएं, शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियाँ कम होनी चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन उन एलिमेंट्स को भी परे रखना चाहिए जो इस आड़ में आपकी पाकिस्तान से लड़ाई करवाएंगे, जो इस आड़ में भारत को मौका देंगे कि वो अपने असर और रसूख के जरिए, पैसे के जरिए, इन्फ्लुएंस के जरिए वो अपना यहाँ अपनी स्टेक बनाए, और आप में और आपकी रियासत के दरमियान दायमी नफरत का आगाज करें। ये डायरेक्ट उनको सपोर्ट करती है, ना पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, ना कश्मीर को सपोर्ट करती। कश्मीर के लिए हमारी सिपाह ने, हमारे लोगों ने जाने दी, कश्मीर के लिए उनके दिल धड़कते हैं। कभी भी कश्मीर का नाम आए तो ये नहीं को कह सकता कि कश्मीर की किसी पाकिस्तानी ने मुखालफत की है। आपको भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत अलहदा चीज है, हुकूमत अलहदा चीज है, कश्मीर के इलेक्शन अलहदा चीज है, और उसको एक इलेक्शन के तौर पे लेना चाहिए। यही लोग जिनको आप गालियां निकाल रहे हैं, कल को एमएलए होंगे, वजीर आजम होंगे, आपने इन्हीं के साथ फिर मुकालमा करना है, इन्हीं के साथ बातचीत करनी है। बातचीत को एक हद से ना गुजरने दें। जिस दिन आपके हाथ में डंडा आ जाए और आगे पुलिस वाला हो, आपकी बातचीत खत्म होगी, आपकी सियासत, आपकी जमहूरियत खत्म होगी। आपने जिस दिन डंडा पुलिस वाले के सर पे मार दिया, खत्म होगी बात, आपकी सियासत गई बाढ़ में। आप जो मर्जी करते रहें, कोई आपको रास्ता नहीं देगा। मैंने आपको मिसाल दी है, बरतानिया में मजारे होते हैं, लाखों लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश डिफेंस लीग या हम एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, हम चाहते हैं इमिग्रेंट्स को उठा के वापस भेज दिया जाए, उसमें कश्मीर भी शामिल है। तो क्या किसी ने हमें निकाल दिया यहां से? इसलिए नहीं निकाला कि वो एक पॉपुलिस्ट, एक आवाज जरूर है, حکومت نہیں ہے، ریاست نہیں ہے، ریاست برطانیہ نہیں یہ چاہتی کہ یہاں سے سب کالوں کو نکال دیا جائے یا سب امیگرنٹس کو نکال دیا جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں اور خود اپنی چیزوں کو مد نظر رکھیں تاکہ نقص امن کا باعث نہ بنے، یہاں بھی جگہ صحیح نہ ہو جہاں ہم رہتے ہیں۔ اور بالکل ممبران پارلیمان بےچارے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے چار چار لاکھ، ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ووٹر ہیں جو کشمیری نژاد ہیں، اور ان کو ان کی بھی بات سننی پڑتی ہے۔ ہمیں سفارت خانوں کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، فورن آفس کو ان ممبران پارلیمان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے جو کشمیری کاز یا کشمیری پلائٹ کے اوپر ایک بیانیہ بناتے ہیں۔ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ راہ و رسم نہیں علیحدہ کرنے چاہیے اور ان کو نیم اینڈ شیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کی مجبوری اور ان کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور بلکہ بات چیت کو، ڈائلاگ کو بہتر طور پہ کرنا چاہیے۔ اور یہ وفود کے تبادلے اور آنا جانا، اگر کوئی منسٹر آتا ہے یا ڈپٹی پرائم منسٹر آتے ہیں یا فورن منسٹر آتا ہے، ان کے ساتھ کشمیری نژاد ممبران پارلیمان کی بھی باہم ملاقات رکھوانی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ یہ الیکشن کے بعد معاملات اور بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ساری ایکسرسائز الیکشن تک ہے۔ جیسے ہی الیکشن ہوں گے، نئی حکومت فعال ہوگی، تو یہ معاملات حل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔
1: ملک صاحب، بڑی زیادتی ہوگی ایز اوورسیز میں ایک دو سوال نہ کروں اور اپنی کمیونٹی کے بارے میں بات نہ کروں۔ آپ ہیومن رائٹس کو بھی دیکھتے ہیں، لائر ہیں آپ، اور پبلک کی آواز بھی ہیں آپ۔ تو ملک صاحب، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، بڑی پاورفل شخصیت ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، حکومت کے ساتھ ان کے بہت زیادہ تعلقات رہتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو ہیں وہ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ تو گرمیوں میں وہ پل پر کھڑے ہو کر نہر میں چھلانگ لگانے کا ان کے پاس بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، ذرا صحت برقرار رکھنی چاہیے۔ تو یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں، تو ہمیں پی آئی اے کب ملے گی؟
0: پی آئی اے خواجہ آصف صاحب نے تو نہیں دینی، پی آئی اے تو آپ کو گورنمنٹ پاکستان نے دینی ہے، اور پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جولائی سے برطانیہ سے مانچسٹر کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو گئی ہے، الحمد للہ، لندن سے بھی شروع ہو گئی ہے، اور پی آئی اے اب ایک پرائیویٹائز ادارہ ہے۔ کوشش پوری کریں گے کہ اگر ایک لوکریٹو آپ کا روٹ ہے، ڈنمارک، فرانس، یہاں سے جہاں جہاں روم یہاں سے آتی ہیں فلائٹیں، تو یہ دوبارہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ فرانس سے شروع ہو چکی ہے، تو یہاں بھی شروع کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ ضرور شروع ہو۔ اور خواجہ صاحب کے بیانات کو، کئی دفعہ سیاسی بیان کو سیاسی بیان کے طور پہ لینا چاہیے اور تھوڑا سا چن اپ رکھنی چاہیے۔ خواجہ صاحب کا کئی دفعہ بیان، جو لازمی نہیں کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کی کا بیان ہو، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور ہم کشمیریوں کے ہیں، کشمیر ہماری شاہ رخ ہے، اور یہ بیانیاں ابھی نہ تبدیل ہو رہا ہے نہ ہونے جا رہا ہے۔ جب تک اس کا پائیدار حل نہیں نکلتا، ہم کشمیریوں کی پلائٹ کے لیے اسی طرح لڑتے رہیں گے۔ آپس میں بھائی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کے خون سے روح گردانی کریں گے۔ پورا زور لگائیں گے کہ کشمیری کاز کو اس طرح کے آپسی اختلافات سے نقصان نہ پہنچے۔
1: ملک صاحب، حکومت سے مزید ہم کیا امید رکھیں؟ اسی طرح ایک خبر چل رہی تھی کہ کوئی دو بندے ہیں، وہ انسانی جو ہے وہ بندوں کو بھی کھاتے ہیں، وہ جیل میں گئے ہیں، یا خبر ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ پڑھی گئی ہے اخبار میں، تو وہ انسانی گوشت کھاتے ہیں، وہ جیل میں بھی لوگ ان سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جیل میں بھی ان کا گوشت کھا جائیں گے۔ تو ملک صاحب، اس طرح کی چیزیں
0: فکر نہ کریں، اس طرح کی باتیں پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آپ بے فکر رہیں، اور اگر کھاتے بھی ہیں تو وہ سولٹری کنفائنمنٹ میں ہوں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ان میٹس جو ہیں، وہ قیدی جو ہیں، ان کی فلاح و بہبود یا ان کی فزیکل ویلفیئر، ان کی لک آفٹر کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی میڈیکل نیڈز اور کھانے پینے میں احتیاط، یہ سارا جیل مینول میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ بے فکر رہیں، کوئی بھی قیدی، کسی بھی قیدی سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو راج صاحب، اجازت اب دیں۔
1: صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آخر میں، اپنی ٹیم کی طرف سے بھی اور اپنے دوستوں کی طرف سے بھی، کہ آپ نے بڑا کھلا ہمیں ٹائم دیا، اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ کیا، جو ہم سے لوگ ہیں جی آپ نے ملک صاحب سے یہ پوچھا نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی ذہنی طور پر پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ آپ کو، چونکہ لائف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو جواب تو عرارت میں ہمیں دینا ہی دینا ہوگا۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈنمارک کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟
0: تھینک یو راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ڈنمارک جو میں مجھے بہت عزیز ہے، और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डेनमार्क आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा भी, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों की गुजारशात, सिफारशात और मुतालबात में जो सहूलियात पैदा कर सकें और ज़रूर करें, और आप भी कोशिश करें, लोगों को बताएं, खुली कचहरी में उनको दावत दें कि वो शरीक हों। अगली खुली कचहरी 29 जुलाई को 2 बजे होगी, तो ज़रूर लोग तशरीफ लाएं जिनके कोई मसला है पाकिस्तान में। और साथ साथ अगर कोई आपको गुजारिशात देते भी हैं तो हमारे बहुत अच्छे, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त यहाँ सफारतकार हैं, और आप उनको ज़रूर रब्ता करें, वो आपकी गुजारिशात पहुँचाते हैं हम तक, बल्कि मुझे मिलने भी आए थे वहाँ लाहौर ऑफिस में। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलके कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आरा को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानियों को खिदमत फराहम करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। आप सबकी बात सुनते रहते हैं, सियासी तौर पर भी बात सुनते रहते हैं, सियासतदान अपनी बात करते रहते हैं। आज हमारे साथ वो सियासतदान हैं जो डेनमार्क की सियासत को उन्होंने आजकल फोकस किया हुआ है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो है वो डेनमार्क का है, डेनमार्क की सियासी पार्टियों की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सरपरस्त आला चौधरी शौकत साहब जो है वो बरतानिया की फिजाओं से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपको बरतानिया की फिजाओं से कोपेनहेगन की फिजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चौधरी साहब, आप किस सिलसिला में गए हैं, कुछ सियासी मीटिंग के सिलसिला में गए हैं या कि वैसे भी गर्मी इंजॉय करने गए हैं?
2: नहीं राय साहब, मैं एक अपने गैदरिंग, अपने इवेंट था हमारा शादी का, फैमिली का, तो मैं उधर आया हुआ था। दो तीन दिन हो गए हैं शादी के सिलसिले में इधर आया था, क्योंकि हमारी फैमिली की एक शादी थी इधर लंदन में, तो उस सिलसिले में आया था शादी पे।
1: लेकिन चौधरी साहब, जो हमारे पास खबरें हैं, कुछ सियासी मीटिंग भी होनी है कुछ लीडरान के साथ, इसको ब्रेकिंग न्यूज दे ना।
2: कोई ऐसी बात नहीं है राय साहब, आपको पता ही है, मैं तो आपको पता ही है आस्ता आस्ता खुली किताब की तरह ही होता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जो होगा फिर आपको, पहले आपको ही बताऊंगा कोई सिलसिला इस तरह होगा
1: तो इसका मतलब है कोई बात है। चले चौधरी साहब, मौसम कैसा है बरतानिया का?
2: माशाल्लाह जी, मौसम बहुत, कल तो बहुत अच्छा था मौसम, टेम्परेचर भी बेहतरीन था और जो है ना गर्मी भी थी। आज थोड़ा सा जो है ना धूप नहीं है, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल ही है, गर्मी की तरह टेम्परेचर है, 25-30 बस इस तरह का है, 23-25 के लगभग है टेम्परेचर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है जी इधर।
1: तो चौधरी साहब, सियासी माहौल को किस तरह फील कर रहे हैं बरतानिया का?
2: वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इस तरह का कोई का वो इशू नहीं होता, लेकिन ये सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना रابطے रखते हैं, एक दूसरे को साथ लेके इज्जत और इत्राम के साथ सब दोस्त भाई चलते हैं।
1: तो जो सब इज्जत इत्राम से ही चलना चाहिए, इसीलिए वो लोग तरक्की करके आगे निकल चुके हैं ना, तो हम अपने कानून ज्यादा अपने ऊपर सख्त करवाते जा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल राय साहब, यही है, हम जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे, एक दूसरे को साथ नहीं लेके चलेंगे, तो ये हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, ग्रुप बंदियां ही होती रहेंगी। तो ये सबसे यहाँ मैंने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपने दोस्तों को, अगर वो एक दूसरे के साथ को आगे पीछे भी होते हैं तो वो दूसरों को बुला के कहते हैं यार इनको साथ मिलाए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारी पार्टी एक बड़ा धड़ा हो, तो जो अपने साथी है उनको छोड़ के नहीं जाते, ये सब जो साथी पुराने भी होते हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं, कहते हैं कि हमारी तादाद ज्यादा होगी, हमारी पार्टी बड़ी होगी और हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी। तो ये दो चार बंदे हम खड़े होके कहें कि हम पार्टी है हमारी, तो इस तरह से इज्जत नहीं बनती, तो ये लोगों का मौकफ और तरह से होता है। ये सब दोस्तों को देखा है मैंने, ये सबको साथ लेके चलते हैं।
1: चलिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप काफी मसरूफ है मेहमान आपके पास बैठे हुए, इंशाल्लाह आप जल्दी वापस आ जाएं।
2: जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, जब आएंगे इंशाल्लाह रब्ता होगा।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे चौधरी शौकत सरपरस्त आला जिनकी आप बात सुन रहे थे।
3: सामान्य नाजरीन, हमारा किसी से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। सामान, मौसम जो है वो गर्म है, ठंडा है, टेम्परेचर ठीक हो चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। ये मौसम जो है सियासत की तरह चलता है, जैसा सियासत ठीक भी हो जाती है, तब्दील भी हो जाती है। तो आगे आप बात सुन रहे थे शाह साहब की, तो मुजीब साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के यहाँ डेनमार्क में सदर हैं और SF पार्टी के जो हैं वो मेंबर हैं और सियासत में गहरी नज़र रखते हैं और हमेशा हम कहते हैं कि वो डेनमार्क की सियासत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उस पर अमली बात भी करते हैं। तो मुजीब साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरम राजा साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। मुजीब साहब, मौसम तब्दील होता रहता है जिस तरह सियासत तब्दील होती रहती है। पहले दूसरे मुल्कों की सियासत होती थी, अब डेनमार्क की सियासत भी सुबह दोपहर शाम तब्दील होती रहती है। तो क्या खबरें आपके पास?
2: देखिए, सबसे पहले तो आज 5 जुलाई है और आपको पता है कि 5 जुलाई 1977 को एक डिक्टेटर ने जमहूरी निज़ाम के ऊपर शबरोज मारा। तो वो जो जमहूरी निज़ाम को एक डिक्टेटर ने 5 जुलाई 1977 को ख़त्म किया, उसकी आज हम पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी एक अभी थोड़ी देर के बाद पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग भी है। तो राय साहब, ये है कि मुल्क की तरक्कियों के लिए ज़रूरी होता है कि हर चीज़ का तसलसल जो है ना वो लगातार।
1: आपने जिक्र किया मजम्मत का, तो उसके बाद आपने टाउन हॉल या पार्लियामेंट के सामने तो नहीं जाना?
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, हम जो है जैसे जमहूरियत के में क्या एहतजाज करते हैं वो हमारा एहतजाज होता है, हम वो वाले ऐसा एहतजाज हम नहीं करते कि जिससे जो है ना किसी को डिस्टर्बिंग हो। हमारा एहतजाज सबको पता है, 49 साल से इसका एहतजाज कर रहे हैं। वो जनरल ज़िया-उल-हक़ के एक डिक्टेटर था, एक डिक्टेटर अल्लाह ताला उसकी मफ़ फरमाए, फोत हो गए हैं, लेकिन एक डिक्टेटर था, उसने एक जमहूरी निज़ाम को तबाह किया और आज वो जमहूरी निज़ाम अगर कायम रहता, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा रहते तो मुल्क की जो है तरक्की उसमें बेहतरी आती, मुल्क में बेहतर तरीके से तरक्की कर रहा था। उस वक्त के दौर में आपने देखा एटम बम की तरफ हम गए, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में आपका नाम हो रहा है। उसके अलावा आपने इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई, सबसे जो बड़ा काम देखे उन्होंने किया, जो मैं समझता हूँ कि वो जनती होगी, उन्होंने कादियानियों को काफ़र करार दिया। उसके अलावा बेशुमार चीजें हुई जो कि मुल्क के लिए बेहतर थी, लेकिन क्योंकि जो ये सोनी ताकतें जो होती हैं ये हमारे लोगों को इस्तेमाल करके अच्छे लीडरों को फिर जाया करवा देती हैं, तो मैं एज ए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस डिक्टेटरशिप की मैं मजम्मत कर रहा हूँ। और ये मजम्मत जो है आपको पता है कि हमारे एहतजाज का तरीका होता है, जरूरी नहीं होता कि आपने सड़कों पर जाके कोई आपने डंडे उठा के लेके जाना है जी हम आज मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये सबक नहीं सिखाया गया, हमें एहतजाज करने का तरीका का एज ए जमहूरियत के तरीके से सिखाया गया, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं। बाकी अब आ जाए अगर यहाँ पे लोकल सियासत की, तो आपको पता है छुट्टियों पे है सारे लोग, कमून भी छुट्टियों पे है, रीजन भी छुट्टियों पे है, पार्लियामेंट भी छुट्टियों पे है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोग डेनमार्क में भी छुट्टियां गुजार रहे हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, मौसम आपको बताया कभी पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा था, अभी कभी अंगड़ाई लेता है, कभी सूरज सामने आ जाता है, कभी बादलों के पीछे चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें चल रही हैं और बाकी मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, आप अपनी कम्युनिटी का मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो ये है कि
1: कम्युनिटी का मौसम तो चल रहा है कि, और एक खबर जो है मेरे सामने भी पड़ी हुई है, पता नहीं आप तस्दीक करते हैं या तर्दीद करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ एक बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब खामोश लीडर हैं चौधरी अशरफ साहब, और खामोश लीडर हैं मलिक नज़ीर साहब, और तीसरे आप भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो सुलह में ये कुछ सुलह की बात, उसमें कुछ छोटी मोटी जो है वो खबरें किसी ने मेरे कान में डाली हैं, आप इसकी तस्दीक करते हैं या तर्दीद करते हैं?
2: जी ऐसी है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि चंद भाई जो है वो 15-20 लोग बैठे थे उस दिन, बड़े सारे मोजज़ लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, चौधरी जहाज साहब थे, चौधरी इफ्तखार साहब थे और बेशुमार नाम जो के कुछ जानता हूँ कुछ नहीं जानता हूँ, आगा नदीम साहब उसमें मौजूद थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पे इन दोनों भाइयों ने सुलह की और उसमें सब ने खुशी का इजहार किया और सब मुतमिन हुए और हम भी बहुत खुश हुए। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम है दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह होने, और फिर आप कम्युनिटी में जितने हम लोग हैं हम वो लोग हैं कि अब हम एक दूसरे को नजर में रहते हैं। लेकिन ये किसी का वक्त किसी भी कुशास हो सकता है, अल्लाह ताला ने हर इंसान का दिन मुकर्रर किया हुआ है, तो फिर हमने एक दूसरे को कंधे देने हैं, हमने एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये परसों ये दो तीन दिन की पहले की बात है, ये बहुत ही अच्छा सुकून था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों भाइयों में सुलह हुई।
1: जी सुलह को हमेशा अच्छा ही पॉजिटिव लेना चाहिए। तो मुजीब साहब आपकी पार्टी क्या कर रही है? कानून तो बहुत सारे तब्दील हो रहे हैं, बन रहे हैं, सख्तियाँ आ रही हैं, और हमारे थिंक टैंक कहते हैं कि सख्तियाँ हमारी अपनी वजह से होती हैं।
2: बिल्कुल आपकी बात तो दुरुस्त है जी, सख्तियाँ हमारी अपनी वजह से, मुराद को आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को हम नहीं लेते, सारे फॉरनर जहाँ पे है ना तो उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं है, हर बंदे की जो अपनी सोच है हर बंदे की। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें आप ये देखें कि अब हमारे जो नई जनरेशन है नए बच्चे हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे जॉब्स पे हैं और उनका एक सोसाइटी में नाम है, तालीमी लिहाज से भी माशाल्लाह हम सबसे आगे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी कम्युनिटी में जब आप यहाँ पे बात करते हैं उलैन की फॉरनर्स की तो उसमें खाली पाकिस्तानी नहीं है, उसमें तो सारी कम्युनिटीज आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी, मैं बाकी कम्युनिटीज को भी कोई ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी नहीं है, बाकी कम्युनिटीज में भी बेशुमार लोग बहुत अच्छे हैं, उनके भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी अच्छे जॉब्स में हैं। लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, हमारी कम्युनिटी में माशाल्लाह हमारे यंग जनरेशन के बेटे बेटियां वेल एजुकेटेड, अच्छे जॉब्स, और वो कानून को भी समझते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं राय साहब की, जो जो हमारी पोलिटिकल जमातें हैं ना जो डेनमार्क की हैं वो भी अपने कार्ड्स खेलती हैं ना, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने होते हैं, उन्होंने भी आगे जाना होता है, उन्होंने भी कुछ बात करनी होती है, अपनी को अपनी कौम को बताना होता है देखे जी हम ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी छुट्टियां खत्म होगी इंशाल्लाह अक्टूबर में, तो जैसे भी कोई अगर हमारे ऐसी चीज के खिलाफ आती है बात तो हम इंशाल्लाह मैं SF की जमात में जाके उसकी उसकी आवाज बनेंगे, हम आवाज उठाएंगे और इंशाल्लाह उनके साथ बात करेंगे। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि हर चीज जो है अक्टूबर के बाद
1: आस्ता आस्ता बेहतर शुरू होगी। मुजीब साहब बड़े अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं हर मस्जिद में, कल्चर सेंटर में, आप क्या कहेंगे?
2: जी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमन का पैगाम, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने अमन का पैगाम दिया, उन्होंने एक वो वाला सबक हमें अता फरमाया कि जो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, उन्होंने नमाज की तलकीन की, देखें नमाज की उन्होंने तलकीन की और अपने नाना का जो है वो इस्लाम है उसको उन्होंने जिंदा किया। आज मुसलमान अगर इस्लाम अगर जिंदा है तो करबला के बाद आपको पता है इस्लाम जिंदा है, और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। वो जो आपने देखे ना जिस जे आपने शेर भी सुना होगा, रसूल नाना बाबा अली है अजय भी पुशदा है हुसैन की है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुसैन की जो कुर्बानियां हैं उस पूरे खानदान की कुर्बानियां हैं, अहले बैत की कुर्बानियां हैं, वो हमारे लिए एक ये मसले राय है और हमें उस पर अमल करना चाहिए।
1: मुजीब साहब आखिर में कोई पैगाम देना चाहें?
2: जी मैं ये कहूँगा जी हम आपस में प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ भाईचारे, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, अगर किसी से कोई तलख कलामी हो जाए, एक दूसरे को दरगुजर करें, माफ फरमाएं। अल्लाह ताला की जात से हमेशा कहती है कि माफ करने वाला जो बड़ा है, तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि हम जितने यहाँ पे लोग रह रहे हैं आपस में प्यार मोहब्बत से, देखें सियासत में सियासी विजन होते हैं, सियासी व्यू से मुराद आपकी जाती चीजें नहीं होनी चाहिए, जाती तौर पे हम सब एक दूसरे के साथ इखलाक से प्यार से मोहब्बत से रहें, और अगर कुछ सियासत में हमने कोई अपना इख्तलाफ करना है वो सियासी लिहाज से होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपस में राय साहब इतफाक प्यार, अभी देखे बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम और भी हो रहे हैं, या मैंगो फेस्ट हो रहे हैं, अभी कल भी था एक, अभी 11 को भी कोई आया, 19 को भी है, तो देखे लोग इसमें भी मसरूफ हो रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि यही भाईचारे का एक तरीका है, आपस में मोहब्बत पैदा करनी है, आपस में इत्तेफाक पैदा करना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारा कदम चूमेगी।
1: जी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया,
2: बहुत शुक्रिया जी।
1: सामान नाज़रीन ये थे डेनमार्क पीपल्स पार्टी के सदर मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, जो कि यहाँ डेनमार्क की SF पार्टी के मेंबर हैं।
3: सामईन कराम FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।